वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे मैंने बताया था ये गाने के पहले कि हमारे पास एक अमेजिंग गिव अवे है फॉर द राहत फतेह अली खान कॉन्सर्ट दैट इज गोना बी हैपनिंग। इट्स कॉल्ड वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। तो उसके तीन टिकट है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो सबसे पहले हमको जो कॉल करेगा, ये जो फर्स्ट गिव अवे है, ये तीन टिकट हम एवरी सेगमेंट ऑफ द आवर हम ट्राई टू प्ले दिस बॉलीवुड क्विज। तो पहला टिकट का जो बॉलीवुड क्विज है वो ये है जो अभी हमने गाना बजाया, मेड इन इंडिया। ठीक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ अलीशा चिनॉय ऑफ द पॉप्स एंड ऑफ कोर्स ऑफ द पॉप सेगमेंट इज वेल। इस गाने का नाम तो मेड इन इंडिया है, बट एल्बम का नाम क्या है? ठीक है, फटाफट से मेरे को फोन करो, जवाब दो और टिकट ले जाओ। 972-235-5555। द सॉन्ग मेड इन इंडिया बाय अलीशा चिनॉय, what's the album name? That's it, simple and sweet.

ऑल राइट, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। मिलिंद भाई ने 9th सेकंड पे मेरे को कॉल किया और जवाब दिया। यस ये गूगली सवाल था। मेड इन इंडिया सॉन्ग है पर एल्बम का नाम भी मेड इन इंडिया है। बहुत सारे लोग को पता था ये जवाब। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। प्लीज मेक श्योर लेडीज एंड जेंटलमैन यू कैन स्टिल प्ले बिकॉज आई हैव टू मोर टिकट्स टू गिव अवे। तो पहला टिकट का तो विनर हमको मिल गया है, वो है मिलिंद भाई। सेकेंड टिकट का जो ओनर रहेगा जो विनर रहेगा वो रहेगा जो मुझे ये सेकंड सवाल का जवाब देगा, ठीक है। सो मेक श्योर यू डायल द नंबर 9722355555 एंड द सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जो पहले सवाल का मेरे को जवाब देगा उसका मैं फोन अनफॉर्चुनेटली मुझे कट करना पड़ेगा यार, मतलब पोलाइटली मैं कट करूंगा, बट आई जस्ट हैव टू मेक श्योर टू टेल यू नो लेट यू ऑल नो दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन ऑन एयर कि हमको पहले सवाल का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, अभी हमने एक ब्यूटीफुल गाना सुना, एक एवरग्रीन गाना सुना, ओ सनम मोहब्बत की कसम। ये आर्टिस्ट कौन है? एल्बम का नाम नहीं पूछ रहा हूं, आर्टिस्ट सिंगर का नाम पूछ रहा हूं। बहुत ही इजी सवाल है यार। 9722355555 उठाओ फोन और बोलो प्रेम भाई मेरे को जवाब पता है और एक और टिकट लेके जाओ। 9722 235 555555

लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब मेरे को मिल गया है। विशाल हमारे विजेता है सेकंड क्वेश्चन के। नाराज मत होइए, सैड मत होइए, फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट, ग्रीन कलर का लोगो है, उस पर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। वी आर डूइंग अमेजिंग वर्क देयर, ऑफ एयर, ऑन एयर, एंटरटेनिंग भी हम डालते हैं, एजुकेशनल भी डालते हैं, इमिग्रेशन, लॉ, हेल्थ, डेंटिस्ट्री, एजुकेशन, फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट, हम बहुत सारे। अभी बाय द वे हमारा न्यूमरोलॉजी वाला एपिसोड वायरल गया यार, 150,000 व्यूज आया यूट्यूब पे, थैंक यू। सो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब देयर प्रेम जोशी पॉडकास्ट। तीसरे सवाल का वक्त हो चुका है। अभी मैंने गाना बजाया, एक आइकॉनिक गाना बजाया, वो चली देखो प्यार की गली, बहुत अमेजिंग गाना है यार पॉप सेगमेंट का। मेरे को कॉल करके आपको बोलना है ये बैंड का नाम क्या है यार, एकदम इजी, फोन उठाओ, बोलो प्रेम भाई, बैंड का नाम, और तीसरा टिकट लेके जाओ राहत फतेह अली खान का आइकॉनिक आइकॉनिक कॉन्सर्ट होने वाला है, वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। जस्ट कॉल ऑन द नंबर 9722355555, टेक द थर्ड टिकट, आंसर द राइट क्वेश्चन, वो चली ये बैंड का नाम क्या है यार, ये बहुत आइकॉनिक गाना है यार, सबको पता होगा, ऑल द मिलेनियल्स आउट देयर। और बाय द वे एक और हिंट डाल देता हूँ, इस बैंड के नाम में मेरे शहर का नाम है यार, प्लीज लेट मी नो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट, वी हैड सो मच फन।
8: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट। Where can we eat now?
7: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
9: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
10: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
15: राहत फतेह अली खान
16: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर।
14: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी, डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस। फ्राइडे अक्टूबर 16, 8:30 PM, कमेरिका सेंटर, फ्रिस्को।
16: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशंस के साथ।
14: टिकट्स ऑन टिकटमास्टर एंड सुलेखा.com।
17: जग घूमया थारे जैसा ना कोई।
18: Hi, I am Shahrukh Khan. You are listening to Fun Asia.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
6: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you have an experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
7: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: That garba was totally worth it We had so much fun
2: I lost so much of calories today and I'm starving but it's so late Where can we eat now?
1: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
3: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
4: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं तेलुगु में भी पंजाबी में भी और तमिल में भी तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
5: फन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net फन एशिया नेटवर्क वन नेटवर्क मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
4: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपरहिट
6: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं तेलुगु में भी पंजाबी में भी और तमिल में भी तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
7: Phanasia नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@phanasia.net Phanasia नेटवर्क वन नेटवर्क मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच

0: तेरी बात।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: मेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं इसी तरफ

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।
3: फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanesia Network product.
4: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं तेलुगु में भी पंजाबी में भी और तमिल में भी तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों
5: फनेशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@phanesia.net फनेशिया नेटवर्क वन नेटवर्क मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच
6: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Phanesia Radio.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट. वी हैड सो मच फन.
4: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट. Where can we eat now?
7: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
8: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
9: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Hi, this is Ranbir Kapoor.
1: And I'm Vani Kapoor. And you're listening to Funasia Radio.
2: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.
2: Aha, what a big ball.

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिज़लिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलिशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
2: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM to 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ फनीशा रेडियो पर.
3: हाय, दिस इज शर्वरी. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.

0: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
1: ऐसी जगह।
2: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
3: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
2: अरे

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
5: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
4: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
5: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
6: Bindaas bolo, bolo bolo bolo, bindaas bolo.
5: Jab gaana bole bindaas, to shanti hogi bindaas. Join Banda Bindaas, Marvin Das, Monday se Thursday from 5 PM to 7 PM for music, musti, or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.

0: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
1: Mandir, DFW Hindu Temple Society presents Navaratri Mahotsavam, October 11th to 20th.
2: Daily Pujas, Aartis, Lalita Sahasranamam, Maha Mangal Aarti, Mataji Puja, aur har sham 8:30 baje Ras Garba.
1: October 16th, 17th, Saraswati Puja aur Akshar Abhyasam.
2: October 17th, Mata Ki Chauki.
1: October 18th, Durgashtami Havan. Aur 20th, Ram Leela aur Ravad Dahan.
2: Visit hindutemple.org or call 972-445-3111.
3: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
5: दिल की बात किससे कहें
6: पंडित गुरुदेव से 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग बर्थ चार्ट एनालिसिस पाम रीडिंग और फेस रीडिंग ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज प्यार शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए कॉल 4695811777 दैट्स 4695811777 पंडित गुरुदेव आइए अपनी बात कहिए
7: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है
8: कितनी लंबी लिस्ट है
7: बस दो पेजेस इंडियन ड्रेसेस मिठाई नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी
8: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो SFL वर्ल्ड वाइड है ना इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं पूजा मंदिर हो झूला हो या फर्नीचर सामान छोटा हो या बड़ा ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है
9: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड विजिट SFLworldwide.com
10: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: एलविंग वालो ध्यान से सुनो ये सिर्फ म्यूजिक नहीं हिंट है Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
12: हर मोहब्बत की आवाज द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान
13: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan aur unke bete Shehzaman Ali Khan ek hi stage par.
12: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
13: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
12: Tickets on Ticketmaster and Soleha.com.

And for the entire Hindu community today, we have the second day of Navaratri. Adi Shakti Shri Durga ka Dvitya Roop Shri Brahmacharani hai. यहाँ ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य होता है और इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप से प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, अतः ये ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात हैं। नवरात्रि के द्वितीय दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है और इनकी उपासना से मनुष्य को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है तथा मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता. On the second day of Navaratri today.

0: the voice of Ustad Rashid Khan. Business owners, it's not just about how many people see or click on your ad, it's about how many become customers. Meet SmartReach AI, a FunAsia network product that helps you reach potential local customers, even those visiting your competitors across radio, digital, streaming, TV, and online radio. And then you measure what truly matters: calls, bookings, offer redemptions, and actual visits to your business. Visit SmartReachAI.us and turn local attention into customers. SmartReachAI.us. Please go visit and get more details on this SmartReach AI new way.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओह हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: It's the time to crack out. It's the time to catch up.
7: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
8: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
9: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
8: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
9: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
10: भूख लगी
11: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
12: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
13: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
14: अरे यार, घर मिल गया.
15: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
16: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
17: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
16: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
7: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
18: बिंदास बोलो बोलो.
10: बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो
18: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास जॉइन बंदा बिंदास मार बिंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर

0: I will have the world news coming up for you right after you finish listening to this track from Piku.
1: अगर किसी को मुझे शादी करनी है तो
2: तुम्हारे 90 साल के बच्चे को साथ में अडॉप्ट करना पड़ेगा
1: बिल्कुल करोगे
2: माथा खराब नहीं होगा

And these wishes going out to the entire Ismaili community from all of us on the FunAsia network. Ladies and gentlemen, it is also the second day of Navaratri today. Adi Shakti Shri Durga ka Dvitiya Roop Shri Brahmacharani hai. Yahan Brahmacharani ka Tatparya Tap Dharani hai. इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में से प्राप्त करने के लिए घोप तपस्या की थी अतः ये तत्चारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात हैं नवरात्रि के द्वितीय दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है और इनकी उपासना से मनुष्य के तप त्याग वैराग्य सदाचार संयम की वृद्धि होती है तथा मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है और वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू वेयर द कलर व्हाइट सर्व मंगल मांगलये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्रियंबिके गौरी नारायण नमस्तुते

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: Hello, namaskar and good morning, Dallas. A very warm welcome to all of you on Gupshup Gali with me too. भूल तो नहीं गए थे ना मुझे भाई, एक पूरे महीने के बाद मैं वापस आई हूँ and I'll not lie, बहुत अच्छा लग रहा है. I just got back from this month long trip to India और मुझे ये बताना है आप लोगों को कि जो इंडिया वापस आने का जो एक ब्यूटीफुल सा एक लिंगरिंग हैंगओवर रहता है ना, वो अभी भी मुझ में है. और वहाँ की सुबह की वो चाय ले लें या अपनों के साथ मस्ती की वो बातें ले लें, वो हंसी मजाक, वो नॉन पर्पस वाली बातें भी और पर्पस वाली बातें भी, और घर का वो कम्फर्ट या एंड बाहर की वो दुनिया भर की आवाज़ें जो फिल्टर होकर घर में आती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग है. एवरीथिंग फील्स सो वॉर्म एंड अलाइव देयर, सीरियसली. एंड इट इज़ दैट फीलिंग यू जस्ट सॉर्ट ऑफ वांट टू बॉटल अप एंड कीप फॉर एवर, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन रियली. लेकिन ये भी सच है कि एज सून एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ द DFW एयरपोर्ट ना, आई सॉ द फेमिलियर टेक्सास स्काईलाइन, और मेरी फैमिली को मैंने जैसे ही देखा ना, आई रियलाइज हाउ मच आई ट्रूली मिस दिस टू. सो यस, आई एम हैप्पी टू बी बैक. और बिफोर मैं ये अपना शो शुरू करूँ, गाने वाने प्ले करना शुरू करूँ, आप लोगों से बातचीत शुरू करूँ, आई डू नीड टू थैंक मेरे उन सारे अमेजिंग फेलो आर्टिस्ट को जिन्होंने पिछले एक महीने में मेरी जगह ली और मुझे पता है कि बहुत एंटरटेन किया. बिकॉज नो मैटर वॉट, आर टीम हैज़ ऑलवेज प्रूव दैट द एंटरटेनमेंट एब्सोल्यूटली नेवर स्टॉप्स ऑन फनेजिया. मानते हैं कि नहीं? सो लेट्स गेट राइट बैक टू डूइंग व्हाट वी डू द बेस्ट. दिस इज योर होस्ट मीटू, फुल्ली रिचार्ज, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सो हैप्पी टू बी होम राइट हियर ऑन गपशप गली.

और सलाम है इस दिन को. इट इज अक्टूबर 12th, लेडीज एंड जेंटलमैन. और घड़ी में हमारे स्टूडियो के बजे हैं 10:17 और मैं आप लोगों के साथ 12:30 तक हूँ. दिस इज आज ही मीठू, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई एम विथ यू ऑन गपशप गली विथ मीठू. हमारी गपशप कंटिन्यूड रहेगी, लेकिन सबसे पहले तो इस दिन की खासियत हम बता दें थोड़ा सा आपको. आज हमारी DFW की वाइब्रेंट स्माइली कम्युनिटी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, और ये इमामत डे जो कहलाता है. एंड ऑन दिस ब्यूटिफुल ओकेशन मैं अपनी पूरी फनेशिया की टीम की तरफ से आप सभी को इमामत डे की बहुत सारी बधाइयां देना चाहती हूँ. एंड वे योर कम्युनिटी सॉर्ट ऑफ कम्स टुगेदर विद द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, द स्पिरिट ऑफ पीस एंड सर्विस इज ऑलवेज वेरी इंस्पायरिंग. खुशहाली मुबारक हो टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग. दिस इज गपशप गली विथ मीठू.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: एकता मंदिर DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी प्रेजेंट्स नवरात्रि महोत्सव अक्टूबर 11th to 20th।
2: डेली पूजास, आरतीज, ललिता सहस्रनामम, महामंगल आरती, माताजी पूजा और हर शाम 8:30 बजे रास गरबा।
1: अक्टूबर 16th-17th सरस्वती पूजा और अक्षर अभ्यासम।
2: अक्टूबर 17th माता की चौकी।
1: अक्टूबर 18th दुर्गाष्टमी हवन और 20th रामलीला और रावण दहन।
2: विजिट hindutemple.org और कॉल 972-445-3111।
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: तारा वो तारा हर तारा।
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
12: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
11: कैसे?
12: पेज 3 ईटरी?
11: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
12: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
11: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
13: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
1: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
14: राहत फतेह अली खान,
15: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर।
1: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी, डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस। फ्राइडे अक्टूबर 16, 8:30 PM, कमेरिका सेंटर, फ्रिस्को।
15: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशंस के साथ।
1: टिकट्स ऑन टिकट मास्टर एंड सुलेखा.com।
16: जग घूमे थारे जैसा न कोई।
17: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

0: जो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन आई विल स्टिल टेल यू टू वॉच इट. इफ यू आर अ रानी मुखर्जी फैन, आई बेट यू विल लव दिस वन. मुझे बड़ा मजा आया था इस फिल्म को देखने में. फिल्म दैट रिलीज ऑन दिस डे इन द ईयर 2012. और मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन का ये ग्रैंड बॉलीवुड डेब्यू था. बहुत ही कमाल का म्यूजिक भी था इस फिल्म के लिए, बहुत अलग किस्म का म्यूजिक था इस फिल्म के लिए एज द फिल्म डिमांडेड. लेकिन फिर भी कुछ कनेक्ट नहीं कर पाए और इसीलिए ये फिल्म चल नहीं पाई. और ये है फिल्म अय्या. लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर ट्यून इन टू गपशप गली विथ मी टू. और ये वो सेगमेंट है जिसका नाम है दिस ईयर दिस डे दैट ईयर, यानी कि आज के दिन कुछ रिलीज हुई फिल्मों के गाने हम आपको सुनवाते हैं. तो अय्या जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, आई मस्ट टेल यू कि 2012 में हॉलीवुड में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बेन एफ्लिक की फिल्म थी, पॉलिटिकल थ्रिलर, जिसका नाम है आर्गो. एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, यू एब्सोल्युटली मस्ट, क्योंकि इस फिल्म को एकेडमी अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट पिक्चर और ये अनडिस्प्यूटेड ब्लॉकबस्टर था ऑफ 2012 इन द हॉलीवुड वर्ल्ड. यस, इट इज बेन एफ्लिक्स आर्गो, जस्ट रिमेंबर दैट. लेकिन अभी चलें आगे और एक और बॉलीवुड की दुनिया से एक और गाना लगाना चाहती हूँ मैं, जो कि ऐसी फिल्म से रिलीज, ऐसी फिल्म का हिस्सा है जो कि रिलीज हुई आज ही के दिन इन द ईयर 2007. वंस अगेन ए रानी मुखर्जी फिल्म. और 2007 12th ऑफ अक्टूबर को एक मैसिव बॉलीवुड क्लैश था. तो पहले तो लागा चुनरी में दाग का गाना सुन लेते, विच कुडंट डू वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस. इट वॉज एन एवरेज हिट डिस्पाइट द वंडरफुल स्टार कास्ट दैट वी सॉ इन दिस फिल्म. लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा कुछ कमाल बॉक्स ऑफिस पे हमने नहीं देखा इस फिल्म का. ऑल्दो द फिल्म इज वेरी गुड, वंस अगेन लव इट. कोंकणा सेन शर्मा एंड देन देर इज यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टॉल गाय यार, बहुत कमाल के वो भी एक्टर हैं, अभिषेक बच्चन ऑफ कोर्स, रानी मुखर्जी, जया बच्चन, अनुपम के, देयर वाज अ बिग लिस्ट ऑफ स्टार कास्ट एंड येट इट कुड नॉट डू एनी वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस. पहले ये गाना सुन लें क्योंकि दिस गाना वाज इंडीड वंडरफुल फ्रॉम लागा चुनरी में दाग.
1: हमारे पास दो ही रुपया है, रख लो.

0: झोली भर के रिश्ते। भागो भागो कोई गधा अपने पल्ले बांध न जाए। भाग झिंकी भाग। वहाँ मुफ्त की रबड़ी खाए, देखो अपने रज्जू ताओ।
1: मक्कल घुमा के मक्खी उड़ाए, रतन और ताऊ दोनों बिकाओ।
0: छुटके भगवान करे वो सुखी रहे और उन दोनों का साया भी हमसे दूर रहे।
1: हर वक्त टोकती रहती है, तू मेरी बहनी भाई है।

from the film Laga Chunri Mein Daag, this song, I have always enjoyed playing it for you. Hopefully, aap bhi utna hi enjoy karke sunte jitna main ise sunti hu aur dekhti hu. That is the additional advantage of being an RJ, you know, ki hum music ke saath saath wo gaane dekh bhi sakte hain, jo hum itna pasand karte hain. Baaki rahi sunne dekhne ki baat, yaar, you know, this connection that we have on Fun Asia Radio, ye sunne aur dekhne ke barabar hi to hai, ki matlab ek tangible ek connection jo हमारा है कि हम एक ना इमेजिन कर लेते हैं अपने लिसनर्स की ये कुछ ऐसे दिखते होंगे, यू नो, एक इमेजिनेशन अपनी बन जाती है. लेकिन यू नो, कीप फॉलोइंग आवर सोशल मीडिया पेज, क्योंकि हम टाइम टू टाइम वहां प्रकट होते हैं, अपने रील्स शेयर करते हैं, कहने का मतलब. तो जरूर लाइक एंड फॉलो कीजिए फन एशिया का सोशल पेज, ठीक है. That being said, moving to another film that released on this very day, 12th of October, साल वही 2007 की, जब वो बॉलीवुड क्लैश की जो बात कर रही थी. तो जी हाँ, लागा चुनरी में दाग के साथ एक और फिल्म आज ही के दिन 2007 में रिलीज हुई थी, और वो डेफिनेटली अनडिस्प्यूटेड विनर था एट द बॉक्स ऑफिस, द लेजेंडरी साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया. और इस फिल्म का जो एक मैसिव स्ट्रक्चर रिस्क था, बिकॉज इट्स बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस ड्रॉ वॉज अक्षय कुमार. और अगर आप याद है आपको, तो बॉक्स फिल्म में अक्षय कुमार को 40 मिनट के बाद फिल्म में एंट्री लेते हैं, तो ये एक काफी बड़ा रिस्क था. लेकिन यस, एवरीथिंग पेड ऑफ. क्लाइमेक्स पे अगर आपको याद हो, वो जो गाना यार, आमी जे तुमार मेरे ढोलना, वो जो गाना और जो वो डांस सीक्वेंस था, दैट ऑल्सो डिड वंडर्स इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक. सो यस, together the movie and the song definitely were blockbuster of the year, and this film sort of paved the way for the genre in total, actually, this horror comedy genre. Iske baad to na jaane kitni films usi genre ki bani hai, including the Stree franchise, right? Lekin filhal bhool bhulaiya ka ye iconic gana, Vidya Balan ka amazing jo dance performance tha, I'll watch, you listen.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Welcome to the Shadi Memory Test. Rapid fire round start karte hain. Decorations ka color.
7: Next question.
6: Bride ki entry song.
7: Yaad nahi.
6: Buffet mein kya tha?
7: Chana papri chaat, bihari kebab, dilli nihari, achari chicken, mutton biryani.
5: Shadi mein baaki details bhool sakte hain, lekin khana kabhi nahi. Gatherings 50 ki ho ya 500 guests ke liye. Choose signature cuisines, customized catering, live cooking stations and professional service. Call 972-905-5449. Signature cuisine, the taste your guests will remember.
8: Dad, property papers कहाँ हैं?
7: Laptop में.
8: Investment?
7: Google Drive.
8: Insurance? Passwords?
7: बेटा don't worry, मुझे सब पता है.
8: Dad, वही तो problem है, सिर्फ आपको पता है.
5: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
9: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
5: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: That garba was totally worth it. We had so much fun.
15: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
14: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
16: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
17: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
18: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
19: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
16: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
20: AR Rahman, live with a full orchestra. Experience the Grammy and two-time Academy Award-winning composer behind Slumdog Millionaire like never before. The A.R. Rahman Symphonic Experience brings his iconic music to life in an extraordinary symphonic celebration, October 29th at Texas Trust Credit Union Theater. One night, a live orchestra, the music of A.R. Rahman. Don't miss it. Get your tickets now.
21: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो.

And I want to make sure ki bhai pura information aap tak pahunche. It is about Texas Primary Care, ladies and gentlemen. For 13 long years, Texas Primary Care Clinic jo hai, wo hame serve karta aaya hai, hamari community ko serve karta aaya hai. Now growing with a brand new name and a second Frisco location that you must be aware of by now. Kyunki hum roz aapko yaad dilate rehte hain. This is Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Humne baat to share कर ली, लेकिन आप बताइए, आपने Lunoxy Medical के बारे में जाके यू नो ऑनलाइन पता करने की कोशिश की या वहां जाकर पता करने की कोशिश की? बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट यू कनेक्ट विथ योर प्राइमरी केयर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्राइमरी केयर की बात हो, अर्जेंट केयर की बात हो, इन हाउस लैब टेस्टिंग की बात हो, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, दे हैव इट ऑल अंडर वन रूफ. ओपन 7 days a week, सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप लोगों के लिए वॉक इन एनी टाइम अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है एंड द वेट टाइम इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल. सो ऑल द गुड थिंग्स दैट यू नो About Texas Primary Care. अगर आप अभी तक कनेक्ट नहीं किया आपने तो क्यों नहीं किया है, ये मेरा सवाल होगा. और आपके जितने भी सवाल आज के इस दिन को लेकर हैं, वी विल आंसर दैट इन ए बिट. पंडित ईश्वर जी विल बी ज्वाइनिंग अस इन ए लिटिल बिट. यू स्टे ट्यून एंड कीप्स लिसनिंग टू फनीशा रेडियो 104.9 FM. आती हूँ.

Now experience the magic of this voice live, ladies and gentlemen. और ये है राहत साहब की आवाज और उनके बेटे के साथ वो जुड़ने वाले हैं इस शो में जिसका नाम है Once Upon a Time World Tour 2026. शहजमान अली खान उनके साथ गाने वाले हैं एंड दोज अनफॉरगेटेबल कवाली सूफी एंड बॉलीवुड हिट्स दैट इज गोइंग टू ब्रिंग ऑन दैट डे एंड द डे इज फ्राइडे October 16th की ये तारीख 8:30 बजे at Comerica Center in Frisco, ladies and gentlemen. तो क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, टिकट्स अगर आपने ले ली हैं तो क्या बात है, और अगर आपने नहीं ली हैं तो ज़रूर याद रखें कि ये एक मौका आप ज़रूर अपने हाथ में रखें क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट दिस चांस टू विन वन टिकट और ये कढ़ाई पॉइंट आप लोगों के लिए टिकट गिव अवे लेकर आ रहे हैं. सो लेट्स गिव देम अ बिग शाउट आउट एंड लेट्स सी हु बिकम्स द विनर टू दिस वन टिकट दैट आई एम गोइंग टू गिव अवे राइट नाउ राइट हियर ऑन गपशप गली जो कि आप फरीशा रेडियो 104.9 एफएम पे सुन रहे हैं. आर यू रेडी? तो राहत साहब पर ही एक सवाल है और वो सवाल बड़ा सिंपल सा है क्योंकि क्या है ना कि मैं इंडिया गई हुई थी एक महीने के लिए तो आई हैव मिस सो मेनी कॉन्सर्ट्स यार, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट्स, बहुत ही अच्छे कॉन्सर्ट्स मिस किए जिनमें से श्रेया घोषाल का कॉन्सर्ट भी मैंने मिस किया. तो इसी बात पे मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि यार डोंट मिस दीज कॉन्सर्ट्स, दे आर जस्ट अमेजिंग लेजेंडरी सिंगर्स एंड परफॉर्मर्स दैट कम राइट. तो मुझे आप बस इतना बता दीजिए कि राहत साहब और श्रेया घोषाल का कोई भी एक गाना जो आपके बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड अभी आया, बस वही तो जानना है, ज़रूर मुझे बताएं. एंड इन द मीन टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज प्ले ए नाइस श्रेया घोषाल एंड राहत साहब सॉन्ग, ठीक है? और आप अपने तरफ से ज़रा बताएं अगर आपको कोई गाना याद आ रहा है राइट नाउ 972-235-5555. वन टिकट दैट यू कैन विन फॉर द कॉन्सर्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कांट मिस इट फॉर एनीथिंग, है ना? तो चलें शुरू करें.

Shreya Ghoshal और Rahat साहब का एक और गाना that is what I wanted to know from you all, ladies and gentlemen, क्योंकि किसी एक को ये जो Rahat Fateh Ali Khan साहब का अपने बेटे के साथ जो ये शो आने वाला है इस फ्राइडे को होने वाला है, it is called Once Upon a Time World Tour 2026, ये टिकट जो है जीत चुके हैं हमारे लिसनर जिनका नाम है मीना, एंड आपको कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ, आपका गाना चलाना चाहती हूँ, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग दैट आई विल बी हैप्पी टू प्ले फॉर यू एंड एवरीबडी else listening to Furniture Radio 104.9 FM. और ये बताना चाहती हूँ कि आपको टिकट पिकअप करना है फ्रॉम कड़ाई पॉइंट प्लेनो, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर एवरी विनर नाउ टिल द 15th ऑफ अक्टूबर दैट वी विल बी गिविंग अवे वन टिकट ऑन माय शो. सो तैयार है इस गाने के लिए जो बड़ा ही खूबसूरत है यार, इट इज सच अ लवली सॉन्ग, इट विल बी माई कंप्लीट प्लेजर टू प्ले इट फॉर ऑल ऑफ यू. थिंकिंग ऑफ राहत साहब राइट नाउ.

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट, वी हैड सो मच फन।
3: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट। Where can we eat now?
4: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
5: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
6: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
7: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
8: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
9: Yaar, festival season aa raha hai. Aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
10: Kitni lambi list hai?
9: Bas, 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
10: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
11: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
12: अजी सुनते हो?
13: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
5: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
14: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
15: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
16: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Funasia Radio.
17: All right, ladies and gentlemen, this is Gapshap Gali with me too. और उम्मीद करती हूँ अभी तक आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है, मेरा भी आप लोगों के साथ बड़े मज़े में गुजर रहा है. एंड इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू यू नो प्ले दोज अमेजिंग सॉन्ग्स व्हेन ए फेस्टिव सीजन स्टार्ट्स. और नवरात्रि तो भाई कल शुरू हो चुका है, उसी से रिलेटेड ये सेगमेंट हमारा हर रोज टिल द एंड ऑफ नवरात्रि दैट वी गोइंग टू हैव बिटवीन 11:30 to 12. लेडीज एंड जेंटलमैन, बी पार्ट ऑफ इट and enjoy the opportunities that these festivals bring. This is Gapshap Gali with me too. और यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि this part of my show is brought to you by AG Fintax, offering trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals एंड बिजनेसेस, तो agfintechs.com पे जरूर जाएं और साथ ही साथ इन्हें कॉल करें टू फाइंड आउट मोर. 4699429888, दैट्स द नंबर टू कॉल. विद एन आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड वाउच बाय हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स एंड एन इन डेप्थ डोमेन एक्सपर्टीज इन टैक्सेशन एंड CFO सर्विसेस, AG FinTech टिल डेट हैज हेल्प थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस ओनर्स बेनिफिट फ्रॉम इट्स स्ट्रेटेजिक एडवाइस एंड सपोर्ट. एंड इफ यू नीड दैट सपोर्ट, get in touch with them. It's as simple as that. Phir ek baar number bata dein hum aapko. It is 4699429888.

लिसन, नवरात्रि का जो काउंटडाउन है ऑफिशियली खत्म हो चुका है एंड द फेस्टिवल सीजन इज फाइनली हियर. डे वन जो था कल, आपने ऑरेंज कलर शायद पहने हो कपड़े, विच इज ऑल अबाउट दैट बोल्ड अनअपोलोजेटिक एनर्जी एंड फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स. एक ऐसी ब्राइट वाइब जो आपके अंदर का जो इंस्टेंट स्पार्क है और वो जो पॉजिटिविटी है उसे उसमें एक स्पार्क लेकर आए, सेटिंग द परफेक्ट टोन फॉर द नेक्स्ट 9 days. तो नाउ दैट वी आर ऑन डे टू, लेट्स ब्रिंग यू द एनर्जी ऑफ डे टू. जो हाई ऑक्टेन एनर्जी था कल का, उससे थोड़े काम और पीसफुल जोन में शिफ्ट होने वाले हैं आज के दिन के साथ. द कलर ऑफ द डे इज प्योर वाइट, सिंबलाइजिंग टोटल क्लैरिटी, डीप इनर पीस एंड कंप्लीटली क्लटरफ्री हेड स्पेस. दैट इज व्हाट वी वांट यू ऑल टू बी इन. एक ऐसी सूदिंग वाइब जो हमारे 24/7 हसल कल्चर में एक मच नीडेड पॉज बटन का काम कर सकती है. सो पुल आउट दोज क्रिस्प वाइब चिकनकारी कुर्तीज लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड या तो फिर सिंपल लिनन शर्ट भी चलेगा यार. एनीथिंग वाइब दैट यू वुड लाइक टू एक्सेसराइज विद, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ योर ऑप्शंस. सुपर मिनिमल रखिए आज का ड्रेसअप, या यू नो दैट काम दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड कम्स फ्रॉम दैट एज वेल. तो आज का गोल है टू लुक एफर्टलेसली काम, सो फ्लॉन्ट योर सीरीन वाइट आउटफिट्स एंड मेक श्योर टू ड्रॉप योर सेल्फीज ऑनलाइन, है ना. ऐसा ही एक वाइट आउटफिट में ऐश्वर्या राय, इमेजिन हर एंड दिस सॉन्ग.

जी हाँ, ताल से ताल मिलाएं, क्योंकि ये सेगमेंट हम अगले आने वाले दिनों में नवरात्रि को डेडिकेट करना चाहते हैं। इट्स डे टू ऑफ नवरात्रि और आज का दिन डेडिकेटेड है माँ ब्रह्मचारिणी को, हु इज़ दी अल्टीमेट आइकॉन ऑफ क्वाइट परसिवरेंस एंड लेजर शार्प फोकस। उनकी कहानी ना हमें बताती है कि जब आप किसी गोल के लिए दिल से कमिट करते हैं ना, बिल्कुल मन से, तबीयत से कमिट करते हैं, तो पेशेंस इज योर बिगेस्ट वेपन देयर इन एन एरा जहाँ पे कि पेशेंस की तो कमी है हमारे पास। एक वो डेस्परेट जो एक लोग है ना, जो इस सोशल मीडिया के चक्कर में, एक वो वायरल सक्सेस, ओवरनाइट वैलिडेशन, इस इन सब के चक्कर में पड़े होते हैं। हर एनर्जी, माँ ब्रह्मचारिणीज एनर्जी इज अ ब्यूटिफुल वेकअप कॉल and she represents that quite unglamorous hustle that happens entirely behind the scenes, long before the world actually applauds for you. It is all about, you know, tuning out the background noise and staying fiercely loyal to your own personal journey. तो क्या आप इस journey में अपने साथ हैं? सवाल आप ही से है। It's day two of Navratri. Happy Navratri to everybody celebrating. यहाँ पे भी एक वो white लहंगे में आलिया भट्ट के चेहरे पे जो काम है ना, it's beautiful.

ना ये तेरा है ना ये मेरा है, ये है हमारा फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को, और ये आपके लिए ना ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे लेकर आए हैं, फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलिशियस डिशेस और एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स होंगे. यार इंडिया से आने के बाद ये खबर सुन के मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा. यार इंडिया में जिस तरह का खाना खाकर आ रही हूँ ना, उसके बाद किचन में घुसने का मेरा कतई मन नहीं हो रहा है, और ऐसे में ये बात मेरे तो बड़े काम की है. होपफुली आप भी ज़रूर ज्वाइन करेंगे शेफ स्पेशल फ्रेश फ्लेवर्स जो आपको मिल सकता है ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे में. और ये बफे आप सैटरडे संडे को दिन के 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक एंजॉय कर सकते हैं. तो जाइए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लेके. मेरे कोई फ्रेंड सुन रहे हैं कि नहीं, मेरी फैमिली सुन रही है कि नहीं, कि मुझे चाहिए ये फ्लेवर लाउंज ब्रेक इस वीकेंड को ही. 5855 प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, दैट्स देयर एड्रेस फॉर योर जीपीएस. द फ्लेवर लाउंज, गुड फूड ग्रेट मेमोरीज इज वॉट यू मेक एट गुड डाइनिंग प्लेसेस लाइक The Flavor Lounge. Once again, thank you very much for tuning in. आज है October 12, घड़ी मिला लीजिए 11:52 by the studio clock. और आज के दिन की खूबसूरती है जो एक खास celebration है. And may the beautiful occasion of His Highness the Aga Khan's birthday bring immense peace, unity, and endless blessings to your families. Keep spreading that wonderful light and love everywhere. That you go. That is what we are wishing for the entire Ismaili community. It's a beautiful day out there actually reality also as far as weather is concerned, which is going to change after Thursday. इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नवरात्रि का जो ये day 2 चल रहा है उसके बारे में बात

थोड़ी आगे बढ़ाना चाहती हूँ. इट इज़ अबाउट द कलर वाइट एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज़ अबाउट यू नो वर्शिपिंग माँ ब्रह्मचारिणी टुडे. और परसिवरेंस और फोकस की बात जहाँ पे आए, वो क्वाइट पीस की बात जब आए, तो डे टू को खास याद किया जाता है. सो यस, डे टू का चैलेंज आपके सामने रखना चाहती हूँ. चैलेंज आपके लिए ये है कि इट इज़ ऑल अबाउट यू नो क्लियरिंग आउट दैट अननेसेसरी मेंटल क्लटर एंड फाइंडिंग योर फोकस. तो आज का आपका चैलेंज ये होने वाला है कि स्ट्रिक्टली 20 करती हूँ, एक्चुअली 25 भी कर सकती हूँ या 30 भी, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ. लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो टाइम जो आप डिसाइड करते हो वो अपने लिए निकालो और कंप्लीट एंड ऑनेस्ट डिजिटल डिटॉक्स करो. अपना फोन फ्लाइट मोड पे रखो यार, कुछ भी करो, स्टेप अवे फ्रॉम ऑल द स्क्रीन्स एंड जस्ट सिट इन साइलेंस टू हियर योर ओन थॉट्स विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. कर पाएंगे आप 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, 25, 30, एक घंटा? कैन यू डू दैट रियली? लेट गो ऑफ द अर्ज टू कॉन्स्टेंटली कंज्यूम इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट अलाउ योर माइंड टू सॉर्ट ऑफ ब्रीद फॉर अ सेकेंड एंड ट्राई दिस आउट एंड लेट अस नो इफ दिस वाइट स्पेस हेल्प यू रिचार्ज. एंड इफ इट डिड, तो हमारा काम तो यहीं पे यू नो कंप्लीट होता है. फिर एक सफेद ड्रेस में जीना तमान एंड दिस वेरी ब्यूटिफुल कामिंग मेलोडियस गाना जस्ट फॉर यू. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

एंड दिस इज गपशप गली विद मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन. घड़ी मिला लीजिए, 12:09 हो चुके हैं. 12 तारीख है आज की एंड इट इज नेशनल कोलंबस डे, ए डे दैट मार्क्स ए हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन एंड द इवेंटफुल कनेक्शन ऑफ टू यू नो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स. और ये दिन सच में उन सारे ब्रेव सेलर्स एक्सप्लोरर्स की जो जर्नी है, उनकी परसिस्टेंस जो रही है उनकी जर्नी में और उनकी जो डिस्कवरीज है उन्हें याद दिलाती है हमें, और इस मॉडर्न दुनिया का जो एक फाउंडेशन उन्होंने ले किया था वो हमें याद दिलाती है. एंड टुडे माइट यू नो आवर कैलेंडर्स माइट से दैट इट इज कोलंबस डे. अक्रॉस द कंट्री वी आर सॉर्ट ऑफ ब्यूटिफुली ट्रांजिशनिंग इनटू द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल्स डे दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे. एज टुडे इज डेडिकेटेड टू ऑनरिंग द रिच हिस्ट्री कल्चर एंड रेजिलियंस ऑफ द नेटिव कम्युनिटीज हु फर्स्ट कॉल दिस लैंड home. So wishing everyone a very meaningful, happy Indigenous Peoples Day, ladies and gentlemen. And while we are talking about Columbus Day, which is truly a massive historical milestone, कुछ हल्के नोट पे कुछ बात करना चाहती हूँ. So allow yourself to indulge, ladies and gentlemen, क्योंकि हम इस fact को बिल्कुल भी ignore नहीं कर सकते कि one of history's, you know, biggest discovery, basically, एक massive navigation error था. Christopher Columbus literally set sail looking for our beautiful motherland, India, but somehow parked his ship halfway across the world in America, which perfectly brings me to our Gapshap Gali fun thought for the day, ladies and gentlemen. Columbus ki ye kahani is baat ka sabse bada historical proof hai ki mardon ko rasta poochne mein 1492 se problem hoti aa rahi hai. Yaar main to mall ke stores agar koi nahi mil raha ho to main to aaram se rasta pooch leti hu ki right jana hai ki left jana hai. But men are different. Kabhi nahi poochenge yaar, kuch bhi ho jaye nahi poochenge. Is it the problem with your man as well? I want to find out. बाकी ये है कि भाई सोल्यूशन आप ही लोगों को निकालना पड़ेगा ढूंढ के. बाकी स्टे ट्यून टू फनीशर रेडियो, क्योंकि म्यूजिक की गलियों में गुम होने में जो खुशी है वो कहीं नहीं मिल सकती. और इसमें कोई घबराहट भी नहीं होनी चाहिए, ना बीवी का डर, ना गर्लफ्रेंड के गुस्से का डर, और ना डेस्टिनेशन से भटकने का डर. मैं तो कहती हूँ कि हमारे साथ भटक लो यार इन गपशप गली विथ मी टू. एंड हियर इज योर फेवरेट सॉन्ग. भटकने के लिए अच्छा गाना भी तो चाहिए.

कितने ढोल गाड़ी में बजे बताओ जब आपके हस्बैंड या आपके बॉयफ्रेंड ने रास्ता नहीं पूछने के कारण आपने बहुत सारी चक्कर लगाई है और बहुत देर तक घूमते रहे वंडरिंग, इस तरह की हमें नहीं पसंद है, कौन बताएगा यार उनको। टॉकिंग अबाउट विच, जी हाँ पूनम, जना एंड लीना, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट कॉल एंड वैलिडेटिंग कि भाई ये इस गाड़ी में मैं अकेले सवार नहीं रहती हूँ, आप में से कई लोग होते हो जिनके ये वंडरिंग, जिनका सिलसिला अभी भी जारी है। Happy wandering to all of you. But as far as those wandering around a massive Walmart aisles is concerned, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए good news है. This is the segment ताज़ा and new, जहाँ पर हम नई ताज़ी खबर आपके लिए obviously लेकर आते हैं. तो अगर आप सुपर स्टोर की जो endless aisles होती हैं उनमें अपना रास्ता और दिमाग दोनों खो बैठते हैं, तो Walmart आपके लिए एक ज़बरदस्त tech upgrade लेकर आया है. According to recent reports, the retail giant is officially rolling out high-tech digital shelf labels that actually light up to guide you directly to your exact process. Product. ठीक है, ये प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल और फ्यूचरिस्टिक है, जहां आपका स्मार्ट फोन जो है डायरेक्टली स्टोर के फिजिकल शेल्फ्स के साथ सॉर्ट ऑफ कनेक्ट करेगा. फर्स्ट यू विल ओपन द वॉलमार्ट ऐप ऑन योर मोबाइल डिवाइस एंड टाइप इन द स्पेसिफिक आइटम दैट यू आर लुकिंग फॉर. जैसे कि मान ली वो जार ऑफ हॉट सॉस ही जो हम बात कर रहे थे, वो अगर आपको ढूंढना है वॉलमार्ट में है, हाँ, तो आप क्या करोगे, ऐप में उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, आपके फोन का सिग्नल स्टोर के डिजिटल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा एंड द इलेक्ट्रॉनिक लेबल लोकेटेड ऑन द शेल्फ राइट बिलो द एग्जैक्ट आइटम विल इंस्टेंटली रिसीव योर सिग्नल एंड स्टार्ट फ्लैशिंग ए ब्राइट एलईडी लाइट. यू सिंपली वॉक डाउन द डेजिग्नेटेड आइल, जो आपके ऐप में आपको दिख जाएगा कि कौन से आइल पे जाना है, एंड यू स्पॉट द ब्लिंकिंग लाइट एंड ग्रैब योर आइटम विदाउट हैविंग टू read dozens of tiny price tags. ये नया pick to light system store employees के लिए भी काफ़ी कमाल का game changer होने वाला है. Instantly guiding them to the exact product so that they can pack online grocery orders at lightning speed. And it is a massive piece of Walmart's broader strategy to completely modernize their business by seamlessly connecting sort of your smartphone to their inventory. तो ये जो है ये मेरे ख्याल से end of the year तक 2,300 stores में आ जाएगा. अभी ये टेक्नोलॉजी टेस्ट राइड मोड पे है एंड कुछ स्टोर्स में, कुछ सिलेक्ट लोकेशंस पे ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है, लेकिन बड़े पैमाने पर इट विल बी बाय द एंड ऑफ द ईयर आई बिलीव. मैं आपको अपडेटेड रखूंगी इस बात पे. एज फॉर लाइटिंग अप योर रेडियो स्टेशंस, यू आर एट द राइट स्पॉट. दिस इज फनीशर रेडियो 104.9 FM. ये है गपशप गली विद मी टू.

mytimeequity.com पे जाकर आपने देखा है क्या, सीपीए सुधीर पाय और उनकी टीम वाकई में बहुत मेहनत कर रही है टू ऑफर यू दैट पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज दैट दे कैन हेल्प यू विथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग. mytimeequity.com इनकी वेबसाइट है और 4697021272 इनका नंबर, स्टूडियो का नंबर है 9722355555. दिस इज गपशप गरी विथ मी टू.

Listen, if you are a 90s kid या parent getting ready for the upcoming holiday shopping rush ना, मैं आपके लिए एक absolutely amazing news लेकर आई हूँ. हम सब की फेवरेट वो दुकान है ना Toys R Us, जहाँ पर आप अपने बच्चे के लिए गए हो या अपने खुद भी बच्चे की तरह आपने enjoy किया हो. ये एक धमाकेदार comeback इनका होने वाला है. And after sadly closing all of its US locations back in 2018, the iconic toy retailer is now officially preparing to open 120 brand new stores right before the holiday season. और वो familiar aisles अब वापस आ रही हैं विद ऑल यू नो आर एब्सोल्यूट फेवरेट्स. अपने बच्चों के कह लेते हैं या हम अपने भी कह लें, यार लेगो वेगो बहुत लोगों को, बड़े लोगों को भी पसंद आता है. बारबी का नहीं पता, लेकिन हाँ लेगो तो मुझे पता है. हॉट व्हील्स भी एक्चुअली एडल्ट्स में भी कभी कभी क्रेज देखा है मैंने. पोकेमॉन, ये सारी चीज़ें वापस आने वाली है. बट दिस इज इन जस्ट योर रेगुलर ओल्ड टॉय स्टोर एनी मोर, बिकॉज सम ऑफ दीज न्यू लोकेशंस आर एक्सपेक्टेड टू फीचर कूल कैफेज, स्वीट कैंडी शॉप्स एंड फुल्ली इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस. सच में उन लाखों लोगों के लिए जिन्होंने उन आइल्स में घूमने का मजा लिया है और बच्चों के साथ बच्चे बनने का वो मजा लिया है, द रिटर्न ऑफ टॉयज आर अस डेफिनेटली एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट होने वाला है. एंड व्हाट एल्स कैन आई टेल यू, आई कैन टेल यू दिस कि यू नो रिमाइंड करना चाहती हूँ कि दैट ग्रोइंग अप is strictly optional right here on Gapshap Gali. Once again, thank you very much for tuning in.

0: ऐसा है, किरण तो थोड़ी देर बाद आने वाली है, उसके पहले आयुषी आने वाली है. सो शी विल बी हियर इन द स्टूडियो इन ए लिटिल बिट. कीप लिस्टिंग टू फर्नीचर रेडियो 104.9 एफएम. और मुझे यानी कि मीठू को आज के लिए इजाजत दे, कल मुलाकात होगी 10 बजे.
1: अगर मैं कहूँ तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 300 है और ब्लड प्रेशर 160 तो क्या कहोगे?
2: क्या? ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है. लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए.
3: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट. न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम. कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com.
2: एकता मंदिर DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी प्रेजेंट्स नवरात्रि महोत्सव अक्टूबर 11th to 20th.
3: डेली पूजास, आरतीज, ललिता सहस्रनामम, महामंगल आरती, माताजी पूजा और हर शाम 8:30 बजे रास गरबा.
2: अक्टूबर 16th-17th सरस्वती पूजा और अक्षर अभ्यासम.
3: अक्टूबर 17th माता की चौकी.
2: अक्टूबर 18th दुर्गाष्टमी हवन और 20th रामलीला और रावण दहन.
3: विजिट hindutemple.org और कॉल 9724453111.
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
9: ये क्या होता है?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
12: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
13: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com.
14: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
15: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
14: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
15: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट. फ्लोर्स क्लीन,
16: चेक.
15: विंडोज क्लीन,
16: चेक.
15: किचन क्लीन,
16: चेक.
15: एयर डक्ट्स क्लीन.
16: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
17: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
18: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान.
19: राहत फतेह अली खान.
18: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fatehi Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan, ek hi stage par.
17: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16th, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
18: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
17: Tickets on Ticketmaster and Suleha.com.
19: Jag ghumeya thare jaisa na koi.
20: गरबानी रमजर दांडियानी धमाल पनिशा नेटवर्क के सारे लिसनर्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: एक्सिस कई रंग फनीशा रेडियो के संग 104.9 FM.
1: हेलो नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून डैलस, कैसे हैं आप लोग? नया हफ्ता शुरू हो गया है और नए हफ्ते के साथ आपकी होस्ट आयुषी आपके लिए कुछ नया लेकर के आएगी हर बार की तरह. और ये हफ्ता, ये महीना बहुत खास है. अक्टूबर का महीना, अक्टूबर जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे त्योहारों का, खुशियों का और अच्छे अच्छे नई नई चीज़ों का, नए नए पकवान का दिन है, महीना है. और साथ में नवरात्रि भी शुरू हो गई है, तो चारों तरफ ना ऐसे भक्ति का माहौल है. बिल्कुल हर घर में पूजा पाठ चल रहा है, चारों तरफ आस्था और उत्सव की का खूबसूरत सा माहौल है. और इस खास अवसर पे हम भी आपके साथ कुछ खास करेंगे. हर दिन माँ दुर्गा से रिलेटेड एक प्यारा सा सेगमेंट आपके लिए लेकर के आएंगे और नवरात्रि के इस पावन पर्व को आपके साथ मनाएंगे. माँ दुर्गा के 9 रूप की आराधना का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की होती है. कहीं माँ के जयकार गूंज रहे हैं, कहीं गरबा और कहीं डांडिया की धूम है, तो कई घरों में पूजा पाठ और भक्ति की खुशबू फैली हुई है. तो आइए माँ दुर्गा के आशीर्वाद लें और इस नवरात्रि अपने जीवन में प्रेम, शक्ति और सकारात्मकता का स्वागत करें. और आज का ये पहला ट्रैक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा, जुबिन नौटियाल की आवाज में.
2: पापा को हार्ट अटैक आया.

तो ये था एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना जुबिन नौटियाल की आवाज में, और ऐसे ही कुछ प्यारे भक्ति भरे गीत आपके लिए लेकर के आएंगे अगले सेगमेंट में कुछ आधे घंटे तक आपके लिए। और क्योंकि नवरात्रि का माहौल है, कहीं गरबा हो रहा है, कहीं डांडिया हो रहा है, कहीं पंडाल सज रहे हैं, कहीं कलश स्थापना हो रही है, भारत के हर कोने में बड़े ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, कल था पहला दिन जब नवरात्रि शुरू हुई संडे को, और क्यों ना हम अब नवरात्रि के जो 9 दिन हैं वहाँ माँ के 9 रूपों की बात करें। अपने सेगमेंट को उसी के साथ शुरू करते हैं, अपने शो को उसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको माँ का जो पहले दिन का रूप है उसके बारे में बताते हैं। माँ शैलपुत्री, इनकी पूजा के साथ नवरात्रि की घट स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है। हर जगह पर अलग अलग मान्यता है इसकी, और उसी के हिसाब से कलश स्थापना करके माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन हमें याद दिलाता है कि हर नई शुरुआत के लिए जरूरी है विश्वास, हिम्मत और मजबूत इरादे। माँ शैलपुत्री को समर्पित है पीला रंग, या फिर नारंगी रंग जिसको हम कहते हैं, गाढ़ा पीला रंग, जो खुशी, पॉजिटिविटी, एनर्जी और एक नई उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। अब शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री जो है उनके बारे में आपको बता दें, माँ शैलपुत्री का मतलब है पर्वत की पुत्री, शैल यानी कि पहाड़ और पुत्री यानी कि बेटी। पुराने कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री पार्वती जी का ही एक रूप है और वो हिमालय राज की पुत्री हैं। उनके हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है, और उनका वाहन है नंदी बैल। वो प्रकृति, शक्ति, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, अगर हम माँ शैलपुत्री को की कहानी को आज के मॉडर्न वुमेन के साथ जोड़ करके देखें ना, तो कितनी खूबसूरत सी बात सामने आती है। मैं आपको बताती हूँ कि आज की औरत भी पहाड़ से कम नहीं है। वो घर संभालती है, करियर बनाती है, अपने सपने पूरे करती है और मुश्किलों के सामने डट कर खड़ी रहती है। कभी एक बेटी बनकर, कभी माँ बनकर, कभी लीडर बनकर, वो हर जिम्मेदारी को अपनी एक नई पहचान बनाती है। और माँ शैलपुत्री हमें यही सिखाती है कि अपने जड़ों से जुड़े रहना और अपने इरादों पर अटल रहना दोनों साथ साथ मुमकिन है। तो भाई, इस नवरात्रि हर उस औरत को सलाम है जो अपनी जिंदगी के पहाड़ को खुद चढ़ रही है। और माँ शैलपुत्री सबको हिम्मत, सेहत और खुशियाँ दें, आशीर्वाद दें। और इसी के साथ अगला गीत आपको सुनाते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा सा गाना है, अमिताभ बच्चन और रेखा हैं, और आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है इस गाने में।

नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में बात करते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन और हम पूजा करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। अगर पहला दिन हमें नई शुरुआत और मजबूत नींव की याद दिलाता है, तो दूसरा दिन हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य, तपस्या और दृढ़ संकल्प। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारी कौन है और उनके नाम का अर्थ क्या है। पुरानी कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती का वो रूप है जिसमें उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्ष तक कठिन साधना की, कभी फल और कभी कंदमूल खाकर, तो कभी सिर्फ पत्तों पर जीवन बिताकर, और अंत में बिना अन्न जल के भी तपस्या जारी रखी। उनकी इस कठोर तपस्या और अटूट संकल्प के कारण उनका नाम पड़ा माँ ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य की खोज, और चारिणी का अर्थ है उस मार्ग पर चलने वाली, यानी वो जो अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से साधना करे। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल। उनका शांत और सरल स्वरूप हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति हमेशा शोर में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत खामोशी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने में होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। भक्तों की मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारी के की आराधना से धैर्य, आत्मविश्वास, संयम और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी मिलती है। और अगर हम माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप को आज की मॉडर्न वुमेन से जोड़कर देखें तो तस्वीर कितनी खूबसूरत लगती है। आज की औरत भी अपने सपनों के लिए तपस्या कर रही है, कभी करियर बनाने के लिए सालों तक मेहनत करती है, कभी घर और बच्चों की जिम्मेदारी के बीच अपनी पहचान बनाए रखती है, तो कभी नए देश में जीरो से अपनी जिंदगी शुरू करती है। उसकी तपस्या शायद किसी जंगल में नहीं होती, लेकिन कभी ऑफिस के डेडलाइंस में, कभी रात भर जागकर पढ़ाई करने में, और कभी अपने परिवार के लिए अपने सपनों को नए सिरे से संवारने में जरूर दिखती है। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी से मिलने वाली एक और सीख, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहना जरूरी है, पर अपनी खुशी और अपनी पहचान को भूल जाना नहीं, क्योंकि आज की नारी को सिर्फ त्याग की मूरत नहीं, बल्कि अपने फैसले खुद करने वाली, अपने सपनों को जीने वाली और अपनी शर्तों पर जिंदगी बनाने वाले इंसान के रूप में भी देखा जाना चाहिए। तो इस दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी से यही प्रेरणा लें, अपने इरादों को मजबूत रखें, अपने सफर पर भरोसा करें और मुश्किल आने पर भी हार न माने। तो भाई मैं आप सभी के लिए माँ ब्रह्मचारिणी से सुख शांति और धैर्य और सफलता की कामना करती हूँ, और इसी के साथ आपको इस बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने की तरफ लेकर के चलती हूँ।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
6: जहाँ तंदूर की आंच हर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ Irving में.

0: पंजाब बाय पेज थ्री नाउ इन इरविन. स्वाद पंजाब का अंदाज पेज थ्री का.
1: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में. इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है. हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
2: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
1: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
2: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. तथास्तु.
3: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. इंडियन अटायर, फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन.
0: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियरबाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट. और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
9: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं.
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं.
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं.
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
12: Of Dallas, heart to heart, Fun Asia.
13: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. और आप सुन रहे थे अपनी होस्ट आयुषी को और अभी भी सुनते रहेंगे आप अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 FM पे. और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा मौसम है बाहर. मौसम बदल रहा है, अगले हफ्ते से हल्की हल्की ठंड भी शुरू होने वाली है. त्योहारों का मौसम आ गया है, चारों तरफ डांडिया और गरबे की धूम है. और इस धूम के बीच में हाँ, आप समय निकालकर मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही सुनते रहिए फनेशा 104.9 FM, बिकॉज हमारे सारे आरजेज आपके लिए हर दिन कुछ नया कुछ अलग लाने की कोशिश करते हैं. और जैसा कि मैंने आपको अपने पहले सेगमेंट में बताया कि नवरात्रि के 9 दिन तक मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए नवरात्रि से जुड़ी कुछ कहानियाँ, कुछ बातें आपको बताऊँ, जो कि 9 दिन तक माँ के हर रूप की पूजा क्यों, कैसे और करते हैं. और आज की जो मॉडर्न वुमन है वो कैसे हर रूप को ना वैसे बखूबी से जी रही है, भले वो तपस्या जंगलों में नहीं अपने लाइफ के हर फील्ड में कर रही है. बट येस, वी विल टॉक अबाउट दैट. वी विल शेयर ऑल द स्टोरीज विथ यू फॉर द कमिंग नेक्स्ट आई थिंक 7 more days. 2 दिन नवरात्र के पूरे हो चुके हैं. देखिए, पता नहीं कब 2 दिन पूरे भी हो गए. एनीवेज, जो लोग फास्ट कर रहे हैं, जो लोग पूजा भक्ति में लगे हैं, उन सबको हैप्पी नवरात्रि. मेरे सारे लिसनर्स को हैप्पी नवरात्रि. और अब आगे बढ़ते हैं, अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं उस महानायक की, बॉलीवुड के उस शहनशाह की जिसका जन्मदिन कल था. और कल हम स्टूडियो में नहीं थे तो सोचे क्यों ना आज थोड़ा सा अपने शो का सेगमेंट इस सदी के नायक, नहीं महानायक को दिया जाए, जिन्होंने अपना कल 84th बर्थडे सेलिब्रेट किया है. 1942 में पैदा हुए बिग बी आज 84 साल के हो गए हैं यार, 84 साल, 84 years and 84 years के जो लेजेंड हैं, आज भी जब पर्दे पे आते हैं तो इनको देख करके दिल खुश हो जाता है, एक अलग सी खुशी होती है आजकल इनको देख करके. एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि वो इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं और केबीसी के एपिसोड्स कर रहे हैं, एंड होपफुली कोई ना कोई फिल्म ज़रूर करेंगे कुछ दिन में, आई एम प्रीटी श्योर. लेकिन आप सोचिए कि कुछ लोग सिर्फ उम्र के साथ बड़े होते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब उनमें से हैं ना, जो उम्र के साथ और वक्त के साथ बड़े नहीं हुए हैं, सिर्फ वो लेजेंड बन गए हैं. और उनको देखने के लिए आज भी उनके घर के आगे लाखों की तादाद में हर दिन, मतलब लाखों नहीं, मतलब हजारों, सौ हजार की तादाद में तो होती होगी भीड़ उनको देखने के लिए, लेकिन आज भी लाखों उनके दीवाने हैं और उनको देखना चाहते हैं. तो भाई चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको उनकी एक फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाते हैं, क्योंकि ये ना इस फिल्म के सारे गाने मेरे बहुत ही पसंदीदा हैं, तो उसी से शुरुआत करते हैं. लेकिन आप भी कॉल करके मुझे फरमाइश दे सकते हैं अमिताभ बच्चन सर के, अगर आप उनके गाने सुनना चाहते हैं तो अगले आधे घंटे यहाँ पर उनके ही फिल्म के गाने बजने वाले हैं. प्लीज़ कॉल करिए 9722355555 पर और अपने पसंद के गाने प्ले करिए. फिलहाल अभिमान फिल्म से ये गाना मेरी पसंद पे, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना है, किशोर जी और लता जी की आवाज़ में, इसको सुनिए और इसका आनंद लीजिए.

0: बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुबीर कुमार का ये गीत सिर्फ सुबीर कुमार का नहीं, बल्कि सुबीर कुमार और उनकी पत्नी दोनों का एक सपना था। हमें खुशी है कि उमा देवी यहां मौजूद है। मैं उनसे विनती करता कि वो अपने पति के पास आकर खड़ी हो जाएं और गाएं।
1: तूने चिट्ठी में लिखा था ना उमा कि सुबीर को फिर से गाना पड़ेगा, क्या वो शुभ दिन तू नहीं देखना चाहती?
0: हाँ बेटी, तुझे गाना ही पड़ेगा, मैं तेरे पिता समान हूं, मेरा आदेश है। चल चल।

तो अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन था कल 11 अक्टूबर को और बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लेकिन उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। उनका जन्म हुआ इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, और उनका नाम अमिताभ हरिवंश राय बच्चन था। हम सब जानते हैं उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन एक सेलिब्रेटेड हिंदी पोएट थे, और उनकी माताजी तेजी बच्चन वॉज नोन फॉर हर इंटरेस्ट इन थिएटर एंड आर्ट्स। ही अटेंडेड शेरवुड कॉलेज इन नैनीताल एंड लेटर स्टडीड एट किरोरी मल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। बिफोर एंटरिंग फिल्म्स ही वर्क्ड इन कैलकटा नाउ कोलकाता, इंक्लूडिंग अ जॉब एज अ फ्रेट ब्रोकर। ही इवेंचुअली मूव टू बॉम्बे नाउ मुंबई बिकॉज ही वॉन्टेड टू परस्यू एक्टिंग। और फिर 1969 में उनको पहली फिल्म मिली। बच्चन साहब ने अनवर अली का किरदार निभाया एक पैट्रियाटिक ड्रामा डायरेक्टेड बाय ख्वाजा अहमद अब्बास, और ये जो फिल्म थी उनकी एक्टिंग डेब्यू थी, और इट अर्नड हिम द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू कमर। द सेम ईयर हिज डीप बैरिटोन वॉज हर्ड heard as a narrator in Mrinal Sen's film Bhuvan Shom. His initial years were not an overnight success story. He appeared in films including Anand, Parvana and Bombay to Goa. Lekin turning point aayi unki film Anand se. 1971 ki ye film jo thi, isme unhone Bhaskar Banerjee ka kirdar nibhaya tha aur Rajesh Khanna ke saath aaye the. अफेक्शनेटली जिनको राजेश खन्ना जी कहते थे बाबू मोशाय, तो उस फिल्म में वो दिखे थे। एंड ही डेमोंस्ट्रेटेड दैट ही कुड कन्वे इमोशनल डेथ एंड नॉट जस्ट इंटेंसिटी। द रोल वॉन हिम फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। और इसी फिल्म से उनके करियर ने लिया एक नया मोड़, और उसके बाद उनको बहुत सारी अच्छी फिल्में मिली। और उनके जो करियर का एक पार्ट था 1973 से लेकर 1979 तक का, उसने उनको एक खिताब दिया जिसको कहा जाता है द एंग्री यंग मैन, एंड दैट वॉज द राइज ऑफ एंग्री यंग मैन। फिलहाल एक गाने की तरफ लेकर के चलते हैं आपको। आनंद ही फिल्म का बहुत प्यारा सा गाना है ये, लेकिन उसके पहले आपको सुना देते हैं, एक जानकारी दे देते हैं। योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक। सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेजेस हेल्प फैमिलीज नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग और रीफिनेंसिंग। कॉल 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com। ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन। तो अगले गाने की तरफ जल्दी से आपको लेकर के चलते हैं। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना है फिल्म आनंद से।

This part of our show is proudly brought to you by AG FinTax, offering trusted tax accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintax.com today. And अब अपने शो को फिर से आगे बढ़ाते हैं और हम अमिताभ बच्चन की बात कर रहे थे. तो अगर हम अर्ली 1970s की बात करें तो हिंदी सिनेमा was ready for a new kind of hero, someone who could express anger, frustration and aspirations of ordinary people. And this was the period that transformed Amitabh Bachchan from a promising actor to a phenomenon. Ji haan, bilkul aisa hi hua tha. Aur Bachchan ji ki kad kaathi, unka uncha kad, unki intense eyes, unki distinctive voice aur unki restrained acting bilkul perfect fit thi. Pehle jis height ko lekar ke unko, you know, film mein nahi mil rahi thi, koi actresses unke saath kaam nahi karna chah rahi thi, wahi height baad mein unke liye na unki pehchan ban gayi. Bahut sari khoobsurat filmein ki is daur mein unhone 1973 mein Zanjeer aayi, and this was a breakthrough that established Bachchan sahab as a leading man. As Inspector Vijay Khanna, he played an angry upcoming promising police officer. The film challenged the more romantic light-hearted hero image popular at that time, aur usne help kiya unko wo jo angry young man wala jo unka style tha usko bilkul establish kar diya is film mein. Fir 1973 mein Abhiman aayi aur ye ek musical drama thi Jaya Bhaduri ji ke saath, jo ki jisse unhone 1973 mein hi shaadi ki thi. And this story explores love, artistic ambition and jealousy and insecurity within a marriage. The music, particularly Tere Mere Milan ki Rehna Jo Gaana maine play kiya tha, ye aaj tak yaad kiya jata hai aur bahut hi pyara aur khoobsurat number hai, mera one of the favorite hai. Fir 1975 mein Deewar aayi, fir 1975 mein Shole aayi, 1977 mein Amar Akbar Anthony aur 1978 mein Dawn aayi. Ye sari filmein ek par ek karke isne Amitabh Bachchan ko बिग, मतलब यू नो बिग बी बना दिया. अमिताभ बच्चन को तो एंग्री यंग मैन दिया, बिग बी तो बाद में बने वो, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. बट हाँ, उन एंग्री यंग मैन का खिताब दिया और उनकी जो उनका जो काम था वो नोटिस किया गया और सुपरस्टार बनने लगे. और उनकी और भी बहुत सारी फिल्में आई इस पीरियड में, जैसे कि कभी कभी 1976 में आई थी, त्रिशूल हो गई, मुकद्दर का सिकंदर हो गई और काला पत्थर जैसी फिल्में. इन दीज ईयर्स ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज एन एक्टर हु कुड मूव बिटवीन एक्शन, रोमांस, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, क्योंकि सत्य पे सत्ता भी आई थी और हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए. एक टाइम पे जिस एक्टर को बहुत सारे लोग कास्ट नहीं करना चाह रहे थे, आज वो सबकी पसंद था और साल दर साल उनकी फिल्में आ रही थी. तो ये थी थोड़ी सी उनकी 70s की जर्नी और बहुत लंबी जर्नी है उनकी जिसके बारे में हम बात करेंगे. फिलहाल अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं, जिसकी फरमाइश आई है हमारी कॉलर शाहीन जी की तरफ से, शाहिना जी की तरफ से, आई एम सॉरी. तो इस गाने को सुनते हैं, नमक हलाल फिल्म का ये गाना, अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल, किशोर कुमार की आवाज. आप भी अपने पसंद के गानों की फरमाइश दे सकते हैं. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. आपकी होस्ट आयुषी आपके कॉल्स का इंतजार कर रही है, जल्दी करिए और अमिताभ बच्चन साहब के जितने गाने सुनना चाहते हैं आज सुन ही लीजिए, क्योंकि उनका 84th बर्थडे मना रहे हम फनेशिया के स्टूडियो से. फनेशिया 104.9 FM, आपकी होस्ट आयुषी है आपके साथ.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: हेलो, Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
4: एक और लड्डू ले लो।
5: थोड़ी और बिरयानी?
4: अरे अमरीका जाके थोड़ी मिलेगा।
6: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
7: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक, दे ऑल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन Health Primary Care.
8: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
9: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी 2 entrees एंड गेट 1 appetizer एब्सोल्यूटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
9: कितनी लंबी लिस्ट है?
2: बस 2 pages। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
9: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
10: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide। शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide। विजिट SFLWorldwide.com।
11: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
12: कीमा पराठा।
13: मम्मी ऑमलेट पराठा।
14: बेटी हलवा पूरी और तरकारी।
15: अब संडे को 3 अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
16: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99। अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड। विजिट सिग्नेचर क्विजीन .net.
17: A.R. Rahman, live with a full orchestra. Experience the Grammy and 2-time Academy Award winning composer behind Slumdog Millionaire like never before. The A.R. Rahman Symphonic Experience brings his iconic music to life in an extraordinary symphonic celebration. October 29th at Texas Trust Credit Union Theater. One night, a live orchestra. The music of A.R. Rahman. Don't miss it. Get your tickets now.
18: Tracks that put you on the right track.
19: Hello and welcome back after this very short commercial break, and welcome to the URA debt relief segment. I'm sorry. Welcome to the URA debt relief segment. Today we have the pleasure of having URA debt relief organization representative Mr. Aman. He's going to tell us about URA debt relief programs. Hi Mr. Aman, thanks for joining us on 104.9 FM Phanesha Radio. Kaise hain aap?
1: ऑल गुड फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को उड़ा और अमन की तरफ से नमस्कार. आज तो है लॉन्ग वीकेंड, एंजॉय कर रहे होंगे हमारे बहुत सारे दोस्त. लेकिन खैर, अपने दोस्तों को ये बता दें कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट इस महीने, इस हफ्ते अगर आने वाली है तो आ गई है, तो प्लीज भरने से पहले एक बार उड़ा से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा. क्योंकि क्रेडिट कार्ड की अगर आप मिनिमम पेमेंट भरते हैं तो क्रेडिट कार्ड उतरता नहीं, रह जाता है. लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड सच में उतारना चाहते हैं, आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवाना चाहते हैं, तो आप पूरा को कॉल कीजिए. क्योंकि क्रेडिट कार्ड 40% इंटरेस्ट आपसे चार्ज करता है, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट. वो याद है अगर बचपन में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा था अगर आपने, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज के चक्र में से निकलना चाहते हैं तो उरा को कॉल कीजिए. उरा आपके क्रेडिट कार्ड का आधा कर्जा माफ करवा देगा, आधे की आसान से किस्तें बना देगा. सारे के सारे कार्ड, चाहे वो पर्सनल हो, बिजनेस के हों, स्टोर के हों, इन सारे कार्ड्स की एक पेमेंट बन जाएगी, आधा कर्जा माफ हो जाएगा. इसके साथ साथ बोनस ये है कि क्रेडिट कार्ड के अलावा आपके पर्सनल लोन भी माफ करवाए जा सकते हैं, या फिर आपका कोई गाड़ी का लोन जो रीपोजेस हो गई है या टोटल हो गई है उसको भी नेगोशिएट करके माफ करवाया जा सकता है. जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. या फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं 9167763555, 9167763555, अगेन 9167763555. और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिए ताकि आपके पैसे बच सकें.
19: थैंक यू सो मच अमन. तो बस अमन ने दे दी है सारी जानकारी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उरा डेट रिलीफ को. थैंक यू सो मच अमन. इनका नंबर है 1-888-888-9914, या फिर आप अमन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं 9167763555. आई रिपीट, इट्स 9167763555. उरा डेट रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर अमन से डायरेक्ट बात हो सकती है. वेबसाइट है www.ura.org. थैंक यू अमन अपना समय हमें देने.
1: थैंक यू.
19: तो चलिए अपने शो को अब बढ़ाते हैं आगे और वापस से चलते हैं अपने बिग बी के सफर पर, जिसकी बात हम कर रहे थे, जिनका जन्मदिन हम आज मना रहे हैं. जन्मदिन था 11 को, पर हम स्टूडियो में नहीं थे. और अगर हम अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे ना मनाएं तो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी. 12 ही अक्टूबर को आए हैं स्टूडियो में, तो ज़रूर यहाँ से उनके बारे में थोड़ी बातें करेंगे, उनके कुछ गाने सुनेंगे, आपसे फरमाइशें लेंगे. और फरमाइश की काफ़ी लंबी लिस्ट भी आ चुकी है मेरे पास. तो अगर आपने मुझे अभी सुनना शुरू किया है तो आपको मैं बता दूं कि आज हम अपने स्टूडियो से अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनकी कुछ फिल्मों के गाने बजा रहे हैं. सोचा था आधे घंटे तक की सेगमेंट रखूंगी, पर इतने गानों की फरमाइश आ गई है कि अब 2 बजे तक सिर्फ और सिर्फ उनकी फिल्मों के गाने चलेंगे. तो हमने उनकी 70s के दौर की बात की. उनका 1980s का जो करियर था ना, वो और अनोखा था, क्योंकि इस समय ना वो स्टारडम से सुपर स्टारडम पे पहुंच गए थे. लेकिन इस समय एक लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट भी हुआ इनके साथ. इनके फिल्मों 80s की अगर बात करें तो उनकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन चल रहा था फिल्मों को लेकर के, वो उस समय भी चल रहा था. 1980 में दोस्ताना आई, शान आई, 81 में लावारिस नसीब, याराना और कालिया जैसी फिल्में आई, 1982 में नमक हलाल, सत्ते पे सत्ता और शक्ति जैसी फिल्में आई, और फिर 1983 में आई कूली. हिज पॉपुलैरिटी हैड रीच्ड अ पॉइंट वेयर ऑडियंसेस कनेक्टेड नॉट ओनली विद हिज कैरेक्टर्स बट आल्सो विद हिज वॉइस, जेस्चर्स, डायलॉग डिलीवरी एंड स्क्रीन प्रेजेंस. देन केम अ डिफाइनिंग क्राइसिस ऑफ 1982. फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान बच्चन साहब को एक सीरियस एब्डोमिनल एनर्जी हुई ड्यूरिंग अ फाइट सीक्वेंस विद को स्टार पुनीत इसार, और this accident brought his life into danger and his recovery became a national concern. Fans across India prayed for him. The incident reveals something extraordinary about his relationship with the audience, with his fans, ki people who had never met him felt personally invested in his survival. His recovery became a deeply emotional moment in the history of Indian cinema. तो बड़ा ही स्टारडम, जो सुपर स्टारडम आई थी उसके साथ एक बहुत बड़ा सेटबैक आया कूली फिल्म के दौरान, जब इनको चोट लगी. एंड ऐसी कई सारी कहानियां हमने पढ़ी हैं कि उस दौर पे ऑलमोस्ट लोगों को, परिवार को, डॉक्टर्स को लगा था कि वी हैव लॉस्ट हिम. अगर आपको मेजर साहब फिल्म याद हो तो उस समय एक सीन है वेयर ही हैज़ ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज लाइफ और फिर शायद उनका ऑपरेशन थिएटर में हाथ हिलता है, अंगूठा हिलता है. दैट इज सपोजिटली, ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी रियल लाइफ जो कूली के दौरान उनके साथ हुआ था उस एक्सपीरियंस को लेकर के वो सीन बनाया गया है. इसके पीछे कितनी सच्चाई है, कितनी कहानी है नहीं जानते हैं, बट ऐसा कहा जाता है कि उस फिल्म में जैसे उनका अंगूठा हिला था वैसे ही उस टाइम डॉक्टर्स ने देखा था कि और उनके परिवार को बताया था दैट यू नो ऐसा कुछ हुआ था. सो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं आपको. इस गाने की फरमाइश आई है फिरोज जी की तरफ से, फिल्म जॉन जानी जनार्दन का ये गाना, नसीब फिल्म का ये गाना, आई एम सॉरी.

0: 1983 में कूली फिल्म के बाद जब इनका एक्सीडेंट हुआ अमिताभ बच्चन साहब का, उसके बाद से 84 में इन्होंने कमबैक किया और एक छोटा सा पॉलिटिकल करियर भी रहा इनका। बच्चन साहब पॉलिटिक्स में गए, उन्होंने इलाहाबाद का लोकसभा सीट भी जीता 1984 में एंड ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंटिल 1987 व्हेन ही रिजाइंड। इट वाज अ शॉर्ट चैप्टर इन अ करियर अदरवाइज डोमिनेटेड बाय एंटरटेनमेंट। और उसके बाद से फिर से वो फिल्मों की तरफ आए, पॉलिटिक्स शायद उनके लिए नहीं था। तो 1988 में फिल्म शहनशाह आई एंड इज रिटर्न ऑन द स्क्रीन आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिड्यूस्ड एक्टिविटी जनरेटेड कंसिडरेबल एक्साइटमेंट। फिल्म ने ऑडियंसेस को एक आइकॉनिक लाइन दी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। तो ये वाला डायलॉग आया और बहुत समय के बाद लोगों ने उनको स्क्रीन पे देखा, बहुत पसंद किया। और उसके बाद से 1990 में आई फिल्म अग्निपथ एज विजय दीनानाथ चौहान। बच्चन साहब की डिलीवर्ड ये जो इंटेंस एक परफॉर्मेंस थी इस फिल्म में, उसको बहुत पसंद किया गया। ऑल दो फिल्म जो है वो इनिशियली बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी, लेकिन बाद में इसी फिल्म के लिए उनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला बेस्ट एक्टर के लिए। और शुरू में जो फिल्म नहीं चली, बाद में इतनी चली कि उसका रीमेक भी बन गया और बाद में फिर हमने उसको 2000s में देखा भी है। तो 1991 में हम आई और वो एक अलग तरह की सक्सेस हुई जिसमें मल्टी स्टारर फिल्म थी। बच्चन साहब अलग किरदार में, बड़े भाई के किरदार में आए थे। फिर 1992 में खुदा गवाह आई, अ लार्ज स्केल रोमांटिक ड्रामा दैट डेमोन्स्ट्रेटेड हिज कंटिन्यूइंग स्क्रीन अपील। हाउएवर द चेंजिंग फिल्म इंडस्ट्रीज इन द सीरीज ऑफ कमर्शियल डिसअपॉइंटमेंट्स मेड द नेक्स्ट फेज ऑफ हिज करियर मोर डिफिकल्ट। 90s का दौर बिग बी के लिए, मतलब अमिताभ बच्चन जी के लिए, उतना सफल नहीं रहा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उन्होंने, जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जल्दी से एक गाने की तरफ लेकर के चलते हैं। लेकिन उसके पहले ये बता दें कि अगर आप किसी तरह के कार या ट्रक एक्सीडेंट में या स्लिप या फॉल एक्सीडेंट में फंस गए हैं, तो भाई अपने आप को समय दीजिए हील करने में। आपकी मदद इस दौरान करेंगे अटर्नी उमर खाजा। लेट हिम फाइट फॉर यू एंड यू पे नथिंग अनलेस ही विंस। कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomar.com। चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं, बड़ा ही मजेदार नंबर है फिल्म डॉन से, और इसकी फरमाइश की है हमें किसने, आनंद जी ने। तो आनंद जी, आपकी फरमाइश पर ये गाना हम लेकर के आ रहे हैं फिल्म डॉन से।
1: रंग जमा हो चकाचक हिर लो पान चबाए, आओ अरे।

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, हाँ हाँ, अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से।

गंगा किनारे बाला ओ छोरा गंगा किनारे बाला ओ खई के पहन बनाओ रत बाला खुली जाए बंद अकल का ताला ओ

तो ये था एक बहुत ही अच्छा सा गाना, खई के पान बनारस वाला, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान है, किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म डॉन का ये गाना। अगले गाने की तरफ जल्दी से आपको लेकर के चलते हैं, बहुत सारे गाने हमने लाइन अप करके रखे हुए हैं, और उसके पहले आपको दे दें थोड़ी जरूरी जानकारी कि भाई बिजनेस ओनर्स, टेक्सास के जितने बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए जानकारी है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी, प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002 विद कॉम्पिटेटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान। तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 844-428-2808 पे, और विजिट तारा एनर्जी डॉट कॉम टूडे। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अमिताभ बच्चन के लिए 1990s उतना अच्छा नहीं रहे था, क्योंकि ही वॉज स्टेपिंग अवे फ्रॉम द फेमिलियर सुपरस्टार इमेज आफ्टर ईयर्स ऑफ डोमिनेंस। बच्चन फिल्म करियर एंटर अ डिफिकल्ट फेज, ही अपियर्ड इन फिल्म्स इंक्लूडिंग इंसानियत एंड मृत्युदाता एंड अदर फिल्म्स, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पे मोमेंटम नहीं पकड़ पाई, और सारी की सारी फिल्में ऐसी ही थी। रैदर देन सिंपली कंटिन्यूइंग एज एन एक्टर, ही डिसाइडेड टू एक्सप्लोर बिजनेस साइड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो उन्होंने 1996 में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर्म की, और ये एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी दैट सॉट टू प्रोड्यूस फिल्म्स एंड डेवलप अदर एंटरटेनमेंट बिजनेसेस। एट द वेंचर फेस सीरियस फाइनेंशियल ट्रबल्स, एंड 1997 में मृत्युदाता आई। बच्चन रिटर्न टू अ लीडिंग रोल इन दिस फिल्म प्रोड्यूस्ड बाई ABCL, उनकी अपनी कंपनी ने। द कम बैक डिड नॉट अचीव द सक्सेस दैट ही हैड होप फॉर। द लेट 90s बिकेम एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन द अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ फेम। अ सुपर स्टार हु हैड वंस डोमिनेटेड इंडियन सिनेमा वॉज नाउ फेसिंग प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, यहाँ तो अगला सेट ऑफ जो सक्सेस था वो शुरू होने वाला था, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब हर बार लीड एक्टर की तरह आने चाह रहे थे, और लोगों को वो देखना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जैसे उनको देखा था उनके एंग्री यंग मैन वाले फेज में, उसमें वो उनको देख नहीं पा रहे थे अब, क्योंकि ऑब्वियसली उम्र बढ़ रही थी, किरदार अलग अलग चाहिए थे। लेकिन एक ऐसा समय आया 2000 से 2009 तक का, जिसको उनका सेकेंड इनिंग कहा जा सकता है, उसमें उन्होंने कमाल किया। अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे।

तुमसे। वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, जल्दी से जाके वापस आते हैं। ऐसे ही खूबसूरत और प्यारे गानों का सिलसिला चलता रहेगा और आप कॉल करके अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। स्टूडियो के नंबर पे 9722355555 है। आपकी होस्ट आयुषी आपके साथ है और अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं क्योंकि उनका 84th बर्थडे था कल, जिसको हम कर रहे हैं सेलिब्रेट आज, क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए ना समय नहीं देखना होता है।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Mandir, DFW Hindu Temple Society presents Navaratri Mahotsavam, October 11th to 20th.
4: Daily Pujas, Aartis, Lalita Sahasranamam, Maha Mangal Aarti, Mataji Puja, aur har sham 8:30 baje Ras Garba.
5: October 16th, 17th, Saraswati Puja aur Akshara Abhyasam.
4: October 17th, Mata Ki Chauki.
5: October 18th, Durgashtami Havan. Aur 20th, Ram Leela aur Ravad Dahan.
4: Visit hindutemple.org or call 972-445-3111.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
6: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
8: Elwing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai.
4: Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
9: Dil ki baat kisse kahe?
10: Pandit Gurudev se. 35 saal se zyada ke experience ke saath, Pandit Gurudev karte hain kundali reading, birth chart analysis, palm reading aur face reading. Black magic aur negative energy removal mein expertise. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 469-581-1777. दैट्स 469-581-1777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए.
11: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
12: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts
4: and circumstances. Call 214-378-8880. Matro Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
14: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppel. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
15: गरबानी रमजट डांडियानी धमाल फनीशा नेटवर्क के सारे लिसनर्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं. हैप्पी नवरात्रि.
16: द दिल ऑफ डैलस हार्ट टू हार्ट फन एशिया.
17: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पे. नेशन का फन स्टेशन है ये और यहाँ पर हर दिन हम आपके लिए हम आर्टिस्ट लेकर के आते हैं कुछ नए और अलग. और आज हम अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे मना रहे हैं. बर्थडे था कल पर मना रहे हैं आज, क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए दिन नहीं देखते हैं, वक्त नहीं देखते हैं. जब मन करे बस सेलिब्रेट कर लो. और इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का बर्थडे है भाई, तो कैसे नहीं मनाएंगे हम. तो भाई चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं. आपके पसंद के गानों को मैंने बिल्कुल लाइनअप करके रखा हुआ है, जितने हो सके उतने गाने प्ले करूँगी. लेकिन बात करते हैं उस दौर की जब अमिताभ बच्चन का करियर डगमगाया था 1990s में. 90s का दौर उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. 70s के जो सुपरस्टार थे उन्होंने 2000s में अपने करियर को रीइन्वेंट करके दुनिया को दिखाया कि भाई डाउनफॉल सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन उससे उभरा कैसे जाता है ये बिग बी ने हमें बताया. 2000 में कौन बनेगा करोड़पति का पहला एपिसोड आया, पहला सीजन आया. और आज 2026 है और 26 साल से अमिताभ बच्चन को हम कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करते हुए देख रहे हैं. एंड वी कैन नॉट इमेजिन एनीबडी हु सिट्स यू नो हॉट सीट की दूसरी तरफ बैठ करके कोई और सवाल पूछ रहा है. जिस अंदाज में वो सवाल पूछते हैं, जिस अंदाज में वो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, वो शायद ही कोई और उसको निभा पाएगा. सो दिस वॉज आर्ग्यूबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज सेकेंड इनिंग्स. बच्चन बिकेम द होस्ट ऑफ इंडियाज वर्जन ऑफ हु वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर, कौन बनेगा करोड़पति. और हिज वॉर्म्थ, हिज कमांडिंग वॉइस, ह्यूमर एंड रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन विद द कंटेस्टेंट्स ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ टेलीविजन आइकन. He connected with the new generation and with millions of households that had grown up watching his films. और इस दौर से हम सब गुजरे हैं जहां पर सवाल आता था और चार ऑप्शंस आते थे और हम भी साथ में बैठ के जवाब दिया करते थे. ये शो हम सब ने देखा है, सुना है और जिया भी है और गालियां भी खाई है इसके लिए. तुमको नहीं आता है, कैसे बच्चे हो तुम लोग कि कॉमन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे हो. केबीसी ने हम सबको ना इंक्विजिटिव बना दिया था, पढ़ने पे मजबूर कर दिया था, सवालों के जवाब देने पे मजबूर कर दिया था. एंड इसी दौर में 2000s में आई फिल्म मोहब्बतें और इसमें नारायण शंकर का किरदार लेकर के आए वो गुरुकुल के हेडमास्टर बन के. और परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन वाले तीन स्तंभ की इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दिखे. और बच्चन साहब और शाहरुख खान को कहा जा सकता है कि मेन किरदार थे इस फिल्म के. एंड बच्चन साहब डेमोंस्ट्रेटेड दैट ही कुड कमांड द स्क्रीन इन अ न्यू जनरेशन ऑफ सिनेमा. उसके बाद 2000 में वो फिल्म आई जिसका नाम था बागबान. और इसमें जो माता पिता का किरदार हेमा मालिनी जी और अमिताभ बच्चन साहब ने निभाया था वो बस हर माँ बाप के दिल को छू गया. एंड जो परिवार में होता था, होता आया है कई परिवारों में, कपल्स के बीच में जो लोनलीनेस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और जो ओल्डर जनरेशन के व्यूज़ थे उसको बहुत सराहा गया. एंड द फिल्म हेल्प एस्टैब्लिश अ न्यू फेज इन द करियर ऑफ बिग बी. तो ये थी कुछ 2000s के दौर की उनकी फिल्में. इसमें से एक ब्लैक भी थी जो 2005 में आई और फिल्म पार जो 2009 में आई. और अगर कहा जाए तो 2000 से लेके 2010 तक का दौर इनके लिए लाजवाब था. अमिताभ बच्चन ने एक अलग पहचान बनाई, मतलब सुपरस्टार तो वो थे ही, मतलब वो सुपर क्या ब्लॉकबस्टर स्टार थे, लेकिन यहाँ से वो बिग बी बन गए और पुरानी पीढ़ी के साथ साथ नए पीढ़ी के भी दिल में उन्होंने जगह बना ली। तो चलिए अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं। एक और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना आपके लिए लाइंड अप है, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि भैया लंच का समय हो रहा है और अगर आप प्लेनों में अच्छा खाना देख रहे हैं तो आपको जाना है सिग्नेचर कुजीन एंड इट हैज़ ऑल द राइट फ्लेवर्स। एंजॉय द फेमस निहारी सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन एंड माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। अगर आप बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, एनिवर्सरी प्लान कर रहे हैं, कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं, then they also offer a banquet service. Visit Signature Cuisine at Spring Creek and Alma in East Plano or go to signaturecuisine.net. Signature Cuisine, leaving its signature on every taste. आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ अपना गिवअवे सेगमेंट भी कर देते हैं। पहले आप फिल्म का नाम बताइए मुझे कॉल करके, ये गाना सुनते ही फिर हम आपको आपका गिव अवे देंगे। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। ये रहा वो गाना, सुनिए इसको। अमिताभ बच्चन की फिल्म है, फिल्म का नाम आपको मुझे बताना है। स्टूडियो का नंबर है 9722355555।

जोरदार तालियां हो जाए हमारे विनर के लिए। हिमांशु पटेल जी को मिलता है $10 का गिफ्ट कार्ड फन पिज्जा किचन की तरफ से। और सही जवाब है हम फिल्म का था ये गाना, और आप एंजॉय कर सकते हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से एक $10 का गिफ्ट कार्ड। एंड गो एंड ट्राई देयर मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा दैट फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा, ट्राई ऑन द फिएस्टा वेजी फाइल लोको सी पैक सिनोर कैमरॉन एंड मोर। आज का सही जवाब था फिल्म हम, हिमांशु पटेल जी को मिलता है $10 का गिफ्ट कार्ड। फ्रिस्को लोकेशन फन पिज्जा किचन, जाइए और लीजिए ये गिफ्ट कार्ड और इन्जॉय करिए आज का अपना दिन पिज्जा के साथ। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अगले गाने की तरफ जल्दी से आपको लेकर के चलते हैं। बच्चन साहब का तो सफर बहुत लंबा है, फिल्मों पर फिल्में, फिल्मों पर फिल्में। 2000 में बिग बी का खिताब पाने के बाद 2010 से 19 तक भी उन्होंने एक से एक वंडरफुल फिल्म्स दी हैं। 2010 में पा आई, 2013 में द ग्रेट गैट्सबी आई, 2015 में पीकू आई, 16 में आई पिंक, 17 में आई सरकार 3 और 2019 में आई बदला, और सब में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाए हैं। 2015 में उनको पद्म विभूषण मिला, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इन 2019 ही वॉज अनाउंस्ड एज द रेसिपेंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड, इंडिया हाईएस्ट ऑनर इन सिनेमा, जो कि उनको 2020 में मिला। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं आपको। लेकिन उसके पहले आपको बता दें एक जरूरी हेल्थ इंफॉर्मेशन, अगर इफ योर हेल्थ डिजर्व्स केयर यू कैन ट्रस्ट, विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स, weight management, women's health and chronic conditions care. Same day appointments are available for new patients. You can call her on 469-649-9995. I repeat, it's 469-649-9995 or visit aimallen.com. It's aimallen.com today. तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं। आपको बहुत ही प्यारा और मज़ेदार गाना है, फिल्म अमिताभ बच्चन की ही है और इसमें उनके साथ हैं जीनत अमान और राखी गुलजार। लेकिन इस गाने के साथ एक और सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आपको बताना है फिल्म का नाम, और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको एक और गिव अवे मिलेगा। जी हाँ, और गिव अवे है एक टिकट है आपको राहत फतेह अली खान जी को लाइव सुनने का मौका, जॉइन बाय हिज सन शाहजमान अली खान ऑन द वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। एंजॉय एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ कवाली, सूफी, बॉलीवुड हिट्स एंड टाइमलेस मेलोडीज, फ्राइडे अक्टूबर 16th को एट 8:30 PM एट को अमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को। एंड आप ये गिव अवे जीत सकते हैं अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हैं। तो बस आपको बताना है फिल्म का नाम, सुनिए ये गाना और कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे जो कि है 972-235-5555। डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी।

मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप ही का तो काम है मेरे अंगने में। अगर आप नहीं कॉल करेंगे तो काम कैसे चलेगा मेरा? धन्यवाद, इतने सारे कॉल्स आए उसके लिए। बट आज का ये गिव अवे जाता है हमारी कॉलर सेजल जी को। पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत सारे कॉल्स आए मुझे, बट सेजल को ये गिव अवे मिल रहा है। एंड यू कैन कलेक्ट दिस वन टिकट फ्रॉम कराही पॉइंट, एंड यहाँ जाके आप ये टिकट लीजिए और राहत फतेह अली खान साहब को लाइव सुनिए फ्राइडे अक्टूबर 16th को 8:30 PM एट को अमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। यार बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बातें करके। बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारी फरमाइशें आई। मैं बता नहीं सकती हूँ कितने सारे गानों की फरमाइश आई है और अभी भी गाने लाइंड अप हैं। बट क्या करें, वक्त बहुत कम है हमारे पास। अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलते हैं। बिग बी के करियर की तरह ही गानों की लिस्ट भी बहुत लंबी है और हमने उनकी लेगेसी की बात की, उनकी फिल्मों की बात की और 2020 से लेके 2026 की बात करें तो जी हाँ, ये लेगेसी आज भी चल रही है जहाँ पर अमिताभ बच्चन को देखने के लिए बहुत सारे लोग दीवाने हैं। मतलब उनके घर के बाहर भीड़ होती है, लोग कौन बनेगा करोड़पति सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए देखते हैं। और जिस तरह से वो ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह से ऑडियंस के रिएक्शन आते हैं उनको देख करके, वही देखने में मज़ा आता है। तो भाई 50 साल से ज़्यादा का करियर है इनका फिल्म इंडस्ट्री में, एंड उन्होंने अलग अलग जॉनर्स के काम के जॉनर्स में काम किया है और अलग अलग जनरेशन्स के साथ काम किया है। और कोई भी आए वो बस उनका फ़ैन ही होता है, उनका दीवाना ही होता है। हर कोई बस एक बार उनकी एक झलक देखने के लिए दीवाना रहता है। और उन्होंने 2020 से लेकर 2025 तक भी बहुत सारी फिल्में की हैं, गुलाबो सताबो, झुंड, ब्रह्मास्त्र, गणपत, कल्कि एंड और भी फिल्मों का हमें इंतज़ार है क्योंकि हम उन्हें रुकते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सुपरस्टार हमेशा हमारे सामने पर्दे पर आते ही रहें। तो उनको जो जो अवार्ड्स मिले हैं, उनको 84 में पद्मश्री मिला था, 2001 में पद्म भूषण मिला है, 2015 में पद्म विभूषण मिला है एंड इन 2019 में अवार्ड मिला था, 2020 में उनको दिया गया, दैट वाज द दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो भाई अवार्ड्स और रिकॉग्निशन के परे है ये कलाकार, ये सदी के महानायक हैं, सुपरस्टार हैं जिनको हम लोग आज भी पर्दे पर देखना चाहते हैं। चलिए इनकी फिल्म का एक और गाना आपको सुनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार गाना है। ये फिल्म भी मेरी फेवरेट हुआ करती है फिल्म सत्ते पे सत्ता का। ये गाना आप लोगों के लिए

0: ये तो चलिए इस गाने के साथ वक्त हो रहा है आप लोगों से विदा लेने का। बहुत मजा आया, आपकी कॉल्स आए, आपकी फरमाइशें आई, और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी कॉल्स और फरमाइशें हमें यहाँ पर लाने पे आने पे मजबूर करती हैं, कुछ नया लाने पे मजबूर करती हैं। प्लीज़ ऐसे ही कॉल करते रहिए, प्यार देते रहिए। अगली हमारे शो में आ रही हैं सुनहरी किरण आफ्टरनून ड्राइव टाइम लेकर के आप लोगों के लिए, तो बने रहिए और सुनते रहिए फरेशा 104.9 FM। आज के लिए आपके होस्ट आयुषी साइन ऑफ कर रही है, मिलते हैं कल फिर ठीक 12:30 बजे। हैप्पी नवरात्रि, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और ऐसे ही खूबसूरती वाला दिन बना रहे प्यारे प्यारे बॉलीवुड गानों के साथ। टाटा, बाय बाय एंड सी यू टुमारो।
1: अरे होगा क्या, चलो लड़कियों को लेके आते।

0: A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. Sun rahe hain aap, main hoon Kiran aapke saath. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. 2:30 PM till 5 PM Monday through Friday. Main rehti hoon aapke saath. 972-235-5555 is the number to through the studio. Jiske through rehte hain aap bhi mere saath. Aur har roz aapke liye aata hai ek naya flavor. Monday is completely dedicated to you. Hafte ki shuruaat aapke saath hoti hai ji. Aapki pasand, aapke man पसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे लेकर आती हैं और आपके पास ये मौका है अपनी पसंद के गाने सुनने का. 90s ऑनवर्ड्स रिक्वेस्ट कीजिए ताकि हम अपनी थीम को या अपनी जो है गानों की क्वालिटी को बरकरार रख सकें. 972-235-5555 कीप दोस कॉल्स कमिंग.
1: शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे जो भी देखे यही पूछे है किसकी बिल्लो. हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई

जी हाँ, आपकी पसंद, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे चल रही है. दिस इज फिल्मी फरमाइश. मंडे इज कम्प्लीटली आपकी पसंद को डेडिकेटेड होते हैं जी, बिकॉज हर रोज कोई नई थीम, कोई नई बात आपके लिए लेकर आती हूँ. तो आप इतनी बेहतरीन ऑडियंस हैं कि एक दिन तो आपकी फरमाइशों का बनता है. तो यही वो दिन है. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. हिरानी साहब की रिक्वेस्ट पे अगला गाना लाइंड अप है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ जी कि अगर आप सीरियसली कुछ जबरदस्त खाना क्रेव कर रहे हैं, खाना पकाने का दिल तो नहीं कर रहा मगर खाना तो खाना है रात को या किसी भी वक्त, तो फिर आप जाइए जी कहाँ, तंदूरी फ्लेम. जी हाँ, गार्लिन में लोकेटेड है. जो बेहतरीन बात है इनकी कि आप जो भी खाइए वहाँ पे, बटर चिकन, बिरयानी, पनीर टिक्का, दाल मखनी, हर चीज़ बेहतरीन जायका, यानी कि घर जैसा जायका आपको मिलेगा व्हेन यू विल गो देयर. सो यू रियली वांट दैट घर जैसा जायका विद सम एक्सक्लूसिव डिशेज, तो फिर आपको जाना है कहाँ एग्जैक्टली, तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लैंड. और उनका फ्लेम आवर यूजुअली हैप्पी आवर चलता है, लेकिन तंदूरी फ्लेम पे चल रहा है फ्लेम आवर मंडे थ्रू थर्सडे 5 बजे से 8 बजे तक. अगर आप वहाँ जाइएगा और 2 entrees ऑर्डर करेंगे तो एक एपेटाइजर मिलेगा आपको एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री. सो दिस इज द फ्लेम आवर का जादू, थर्सडे, मंडे थ्रू थर्सडे 5 बजे से 8 बजे शाम. तो उनकी वेबसाइट चेकआउट कीजिए बिफोर यू गो देयर, ताकि जब आप क्या ऑर्डर करेंगे आपको पता हो, और कौन सा एपेटाइजर आप फ्री खाएंगे जब आप 2 entrees ऑर्डर करेंगे. वो वेबसाइट है tandooriflametx.com. वंस अगेन द वेबसाइट इज tandooriflametx.com.

जी हाँ, हिरानी साहब की आवाज़ पे ये की रिक्वेस्ट पे ये खूबसूरत गाना आपके लिए प्ले हो रहा था, अमिताभ बच्चन साहब पे पिक्चराइज्ड. और अब द नेक्स्ट वन इज गोइंग आउट टू सफ़ी. सफ़ी, बिफोर आई प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू, आप तमाम लोगों को ये बताते चलें कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए लेकर आए हैं ये अपडेट कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ आपके नेटवर्क में नहीं आता तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज there is another option for affordable, accessible primary care, and that is Passion Health Direct. Primary care, Passion Health Direct आपके लिए एक membership program इन्होंने शुरू किया है, $85 a month में, and

ज्वेलरी देखिए आजकल फेस्टिव सीजन चल रहा है तो शॉपिंग वॉपिंग जरा हमारी लिस्ट पे रहती ही है और कुछ जेवर खास तौर पे खवातीन को बहुत ज्यादा पसंद है एंड सम ज्वेलरी कंप्लीट्स एन आउटफिट वाइल अदर्स बिकम अ पार्ट ऑफ आर स्टोरी और पीएमजे ज्वेल्स जो कि अब फ्रिस्को में लोकेटेड है ऐसी ही एक जगह है जहां आपको मिलेंगे ऐसे ही पीसेस जो आपकी कहानी का हिस्सा बनेंगे दे आर ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप आइए एक्सप्लोर कीजिए उनके ब्यूटीफुल गोल्ड ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी ब्राइडल करेक्ट कलेक्शन स्पेशल ओकेजन ज्वेलरी और जस्ट पैम्पर योरसेल्फ ज्वेलरी विजिट कीजिए पीएमजे ज्वेल्स को दे आर लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को और पाइए डिस्कवर कीजिए ज्वेलरी दैट इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स चित्रा जी दिस इज गोइंग आउट टू यू

जी हाँ बसंती, नो डांस सुपर 30 ऋतिक रोशन पे पिक्चराइज्ड ये गाना आप सुन रहे थे सफी की रिक्वेस्ट पे. और अगला गाना चित्रा जी की रिक्वेस्ट पे प्ले कर रहे हैं आर वेरी ब्यूटीफुल एंड आर लवली लिसनर. चित्रा जी, बिफोर आई प्ले दिस, आपको बताती चलूं और तमाम लिसनर्स को बताती चलूं कि कुछ

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
4: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
5: Kabhi chatpata sa twist, kabhi तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
6: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
12: लिया.
11: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
12: नहीं आया.
11: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
13: Visit www.sanadainc.com today.
14: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है.
15: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
16: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
15: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
16: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. तथास्तु.
17: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन.
18: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
19: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
18: Miss Clicks,
20: 100 लोगों ने क्लिक भी किया.
18: Customers कितने आए?
21: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
22: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
23: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
24: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

You're tuned into 104.9 FM Financial Radio Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran May, main Kiran aapke saath. And if you are looking for a smarter way to plan your future, financial future, to main aapko bataun ji, My Time Equity led by CPA Sudhir Pai is here. They are offering personalized strategies designed around your financial goal. From portfolio management and real estate to alternative investments, agar aap retirement प्लानिंग सोच रहे हैं तो वो भी हर चीज आपको मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी आपको यहां, यानी के माई टाइम इक्विटी पे लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, क्योंकि योर फाइनेंशियल फ्यूचर डिजर्व्स मोर देन अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. यू नीड समथिंग पर्सनलाइज्ड, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोना डू फॉर यू. कनेक्ट विद माई टाइम इक्विटी टुडे. दिस इज 469-702-1272 is their number, ya phir mytimeequity.com is where you need to log on.

0: And it is time to bring you a giveaway. Fun Pizza Kitchen ki taraf se aapke liye aaya hai $10 off your next bill at Fun Pizza Kitchen Frisco location. Waise aap unka menu check out kar sakte hain. funpizzakitchen.com is where you need to log in to find more about them. Aur ab unhone ek bada hi zabardast Mexican inspired pizza lineup shuru ki hai ji, jisme vegetarian pizzas hain, fiery chicken pizzas hain, seafood packed pizza. मतलब जो भी आपको पसंद है वो फ्लेवर आपको मेक्सिकन पंच के साथ मिलेगा ऑन फन पिज्जा किचन. और उसके अलावा उनके फेवरेट्स तो हैं ही, सो विजिट देम funpizzakitchen.com. और अगर आप ये $10 जीतना चाहते हैं तो चूंकि आपकी पसंद चल रही है आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे, तो मुझे बताइए अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक रोड ट्रिप सॉन्ग आप ऐसा बताइए मुझे जो आपको बहुत पसंद है. कहीं आप ट्रैवल पे लंबे ट्रिप पे जाते हैं कहीं, तो आप कहते हो कि जी मेरी प्लेलिस्ट में ये एक दो गाने तो जरूर होने चाहिए. 972-235-5555 is the number to the studio. Give me a call and share your favorite road trip song. Farish Radio, you are live in air. What is your name?
1: My name is Subbu.
0: Subbu, जी सर, बताइए. What is your favorite road trip song?
1: बहुत सारे हैं लेकिन एक है, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया, ये वाला गाना.
0: क्या बात है, यू हैव अ वंडरफुल वॉइस, थैंक यू सो मच.
1: वो भी है पटाखा गुड्डी, हाईवे का गाना है पटाखा गुड्डी.
2: Pataka Guddi, Bilkul Sahi Ji. I have noted them. Aapke liye zarur play karte hain. Sunte rahiye. If you are the winner, I will ask you to give me a call back. Please keep listening. Thank you. Okay, Fani Sheh Radio, you are live on air. What is your name? Riya. Hi Riya, how are you doing? Good, good ma'am. How are you? Very good, thank you so much. Bataiye, what is your favorite road trip song? You need to have that in your playlist. ठीक है, perfect. रिया सुनते रहिए. अगर if you are the winner, I'll ask you to give me a call back. Thank you so much. Funny J Radio, you are live on air. What is your name?
3: Yeah, hi, I am Jyoti.
0: Hi Jyoti, बताइए what is your favorite road trip song?
3: Dil Deewana from Pardesh.
0: ओके, ये दिल दीवाना. ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ये तो सही है, आपने ढूंढा है, वो भी रोड पे ही गा रहे हैं इसे. बिल्कुल सही. ऑलराइट ज्योति, सुनते रहिए. आई विल अनाउंस द विनर राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. थैंक यू फॉर योर कॉल. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम?
4: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए.
4: या मेरा नाम हनान है.
0: जी हनान, बताइए व्हाट इज योर फेवरेट रोड ट्रिप सॉन्ग?
4: My favorite road trip song is Mere Sanam Tujhko Meri Pratham from a Gupta movie.
0: Oh, interesting. Very interesting. Thank you so much, Hanan, for sharing that song. Keep listening. Fani Shirinio, you are live on air. What is your name?
5: Hello, Amina hai mera naam. Aur meri bhi wohi pasand hai road trip song ke liye jo Pardesh ka song hai, Ye Dil Deewana.
0: क्या बात है जी, लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स दैट आई एम गेटिंग. थैंक यू सो मच अमीना, सुनते रहिए. थैंक यू फॉर शेयरिंग. आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. ओके, दैट वाज ऑल द टाइम वी हैड फॉर टेकिंग द कॉल्स. एक और कॉल लेंगे जी और फिर कॉन्टेस्ट हो जाएगा खत्म. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम?
6: हेलो,
0: हाय, व्हाट इज योर नेम?
6: सारा.
0: जी सारा, बताइए.
6: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
0: ठीक है जी, सही आपने गाड़ी वाला गाना चुना है, बिल्कुल परफेक्ट. सारा थैंक यू सो मच, सुनते रहिए. इफ यू आर द विनर, आई विल आस्क यू टू गिव मी अ कॉल बैक. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम?
7: हाय, माय नेम इज मानसी.
0: इज इट मानसी?
7: मानसी, MANSI.
0: जी मानसी, बताइए.
7: हाँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है दिल चाहता है.
0: दिल चाहता है, परफेक्ट. आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑल दीज ब्यूटिफुल नंबर्स. थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग दिस सॉन्ग. सुनते रहिए, आई विल अनाउंस द विनर जस्ट इन अ बिट. थैंक यू.
7: थैंक यू.
0: ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर द पार्टिसिपेशन. इस गाने की ब्रेक पे हम जा रहे हैं, गाने से वापस आऊंगी तो मैं अनाउंस करूंगी विनर. मैथ के फॉर्मूले में आप सबकी सीक्वेंस ऑफ कॉल्स के नंबर डालने हैं.

All right, जी, फन पिज्जा किचन की तरफ से ये $10 का गिफ्ट कार्ड आया, बेसिकली $10 ऑफ योर नेक्स्ट बिल एट फन पिज्जा किचन लोकेटेड इन फ्रिस्को. और आप तमाम लोगों की फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. आई गॉट अबाउट 7 ऑन एयर कॉल्स और उसके बाद 2-3 ऑफ एयर भी कॉल्स आई. और तमाम लोगों के जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं वो सीक्वेंस में एक मैथ के फॉर्मूले में डालती हूँ, आपको एक नंबर असाइन होता है और आपकी लक ही आपकी विन का फैसला करती है. बिकॉज अगर मेरे से पूछा जाए तो आप तमाम लोग विनर्स हैं, मैं विनर सेलेक्ट नहीं कर सकती हूँ. तो इसीलिए आई लीव इट टू योर लक. और आज के हमारे लकी विनर हैं कॉलर नंबर 4, दैट वाज हनान. हनान, अगर आप सुन रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वन दिस $10 ऑफ योर नेक्स्ट बिल एट फन पिज्जा किचन फ्रिस्को. गिव अस 2 days, आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाएंगे एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 days टू अवेल योर गिव अवे. अगर आप यू नो यू आर लिसनिंग टू मी, प्लीज गिव मी अ कॉल बैक सो दैट आई कैन टेक योर डिटेल्स. वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू हु हैव पार्टिसिपेटेड, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मेनी ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, जो मैं अब आपके लिए एक एक करके प्ले करूंगी क्योंकि ये है आपकी फरमाइश. फिल्मी फरमाइश सुन रहे हैं आप, पसंद आपकी, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे विद योर मनपसंद आरजे.

0: चाहता है।
1: जी हाँ, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको एक ऐसा गिव अवे दूं कि आप सुन के खुश हो जाएं, और वो है जी राहत फतेह अली खान साहब का लाइव कॉन्सर्ट आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, यू आर ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में। मैं किरण आपके साथ मंडे थ्रू फ्राइडे 2:30 बजे से 5 बजे तक रहती हूँ, और आज चल रहा है आपकी पसंद, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ, यानी कि फिल्मी फरमाइश इज गोइंग ऑन। 4:30 PM तक फिल्मी फरमाइश 4:30 PM till 5 PM लेके आऊंगी आपके लिए माथुर लॉ ऑफिसर्स के साथ। अटर्नी संजय माथुर हमारे साथ मौजूद होंगे टू टेक योर क्वेश्चंस लाइव। सो यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ सिविल लिटिगेशन, इमिग्रेशन, फैमिली लॉ, यू कैन गिव अस अ कॉल देन। और अब वापस आते हैं राहत फतेह अली खान कॉन्सर्ट पे। दिस इज वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। राहत फतेह अली खान साहब के साथ उनके बेटे शाहजमान अली खान भी मौजूद होंगे, और शाहजमान अली खान ने भी एक बड़ा पॉपुलर गाना गाया था, ड्रामा था देखिए नुमान एजाज का। एक तो मैं जब वैसे मुझे हमेशा इस ड्रामे का नाम याद होता है, और एकदम से जैसे ही बात बिस्मिल याद आ गया, तो बड़ा उसका पॉपुलर ओएसटी गाया था इन्होंने। तो ये दोनों बाप बेटे का जोड़ी जो है वो मौजूद होगी स्टेज पे, तो आइए और इन्जॉय कीजिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट को। कव्वाली, सूफी म्यूजिक, बॉलीवुड हिट्स, टाइमलेस मेलोडीज, एवरीथिंग। फ्राइडे अक्टूबर 16th को आपके लिए आ रहा है ये इवेंट 8:30 PM पे एट कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को। तो बस आज 12 हो चुकी है, इसी जुमे अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं वो टाइमलेस मेलोडीज और राहत फतेह अली खान साहब और शाहजमान अली खान की आवाज़ में वो जादुई माहौल को आप मिस नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल भी। सो टिकट्स खरीदिए, sulekha.com पे अवेलेबल हैं, इवेंटब्राइट पे आप जा सकते हैं। सो अब जो है वो एक मज़े की बात आपको बताती हूँ, और वो है कि कड़ाई पॉइंट जो कि प्लेनों में लोकेटेड हैं, आपके लिए लेकर आए हैं 1 free ticket फॉर दिस इवेंट। तो आप हासिल कर सकते हैं ये एक फ्री टिकट ब्रॉट टू यू बाय कड़ाई पॉइंट लोकेटेड इन प्लेनों। तो आपको क्या करना है जी, राहत फतेह अली खान साहब के कॉन्सर्ट की बात हो रही है तो आप मुझे कॉल करके बताइए कि आपका राहत साहब का फेवरेट गाना कौन सा है। 9722355555 है नंबर टू द स्टूडियो। वंस अगेन सवाल बहुत सिंपल, राहत फतेह अली खान साहब का कॉन्सर्ट का एक टिकट आपने जीतना है, तो ब्रॉट टू यू बाय कड़ाई पॉइंट इन प्लेनो। तो आपको मुझे बताना होगा कि आपका फेवरेट गाना राहत साहब का कौन सा है। कॉल फोन उठाइए, कॉल मिलाइए।

जी हाँ, और हम भी पूरा जग घूम लें तो आप जैसी हमें ऑडियंस नहीं मिलेगी. सब कुछ मालूम है आपको, सब कुछ पता है. और क्या बेहतरीन गाने आप रेकमेंड करते हैं. आप सभी ने मुझे फोन कॉल किया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट. अभी भी फोन लाइंस बज हो रही हैं. कॉन्टेस्ट का टाइम हो चुका है खत्म, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर कॉल्स फॉर दिस गिव अवे, टिकट गिव अवे जो आपके लिए आया है कड़ाई पॉइंट की तरफ से. और जी, सबसे पहले आपको बताऊं गाने कौन कौन से रिकमेंड, या आपकी पसंदीदा गानों में तुझे देख देख सोना, इसके साथ मैं जहां रहूं, या फिर तेरे मस्त मस्त दो नैन, या फिर लागी तुमसे मन की लगन, या फिर दिल तो बच्चा है जी, एक से बढ़कर एक. और एक और गाना तेरी मेरी प्रेम कहानी, और एक और रिकमेंडेशन आई मुझे तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, और एक और आज दिनचर्या. मतलब आप सारों ने तमाम मेरे जो पसंदीदा राहत साहब के गाने हैं वो बता दिए. बहुत बहुत शुक्रिया. और जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल आती है उसी सीक्वेंस को एक नंबर असाइन होता है, और उस नंबर को हम मतलब वो मैं मैथ के फॉर्मूले में डाल के विनर अनाउंस करती हूँ. आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं जी तरुण सूरी. तो तरुण, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये एक टिकट. आप काइंडली मुझे कॉल बैक कीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप अपने टिकट को कैसे अवेल करेंगे कढ़ाई पॉइंट जाके. बट फॉर दैट यू विल हैव टू गिव मी अ कॉल बैक. द नंबर अगेन टू द स्टूडियो इज 9722355555. एंड टू ऑल द रेस्ट ऑफ यू, अमीना, विशाल, सुनील, शर्मीन, अजय, वैभव एंड मेनी मोर जिन्होंने हमें कॉल किया, आप सबकी पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया.

All right, जी, राहत फतेह अली खान साहब के तो खैर इतने सारे गाने हैं, किस किस गाने का तस्करा किया जाए, तो ये सारे गाने जो एक से बढ़कर एक शाहकार हैं, ये सब आपको मिलेंगे अंडर वन रूफ ऑन अक्टूबर 16th, दैट इज द फ्राइडे, 8:30 PM, कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. टिकट्स लेना बिल्कुल मत भूलिए, सुलेखा.com पे टिकट्स आपके लिए अवेलेबल हैं. तो इस बेहतरीन कॉन्सर्ट की गिव अवे के बाद अभी एक दो गाने आप लोगों की रिकमेंडेशन के मैं राहत साहब के जरूर प्ले करूंगी. कुछ आप लोगों के फेवरेट रोड ट्रिप सॉन्ग्स भी अभी लाइंड अप है मेरे पास, तो लेट अस मूव ऑन टू दिस अनदर सॉन्ग दैट इज अ रोड ट्रिप सॉन्ग जो आप ही लोगों ने किया था रिकमेंड. एंड विद दैट लेट अस मूव फॉरवर्ड.

और आगे बढ़ते हुए आपको बताती चलूं जी कि आपका बिजनेस जो भी आपका ब्रांड है दैट नीड्स मोर देन जस्ट अ सोशल मीडिया पोस्ट, इसीलिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अटेंशन, रीच एंड रिजल्ट्स, एंड दैट इज व्हाई फाइनेंशियल नेटवर्क इज ब्रिंगिंग यू इट्स मीडिया एक्सपर्टीज टू योर सोशल मीडिया विद रिलेटिव मीडिया. फ्रॉम स्क्रोल स्टॉपिंग रील्स एंड आई कैचिंग ग्राफिक्स टू कैप्शंस, कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन और एम्पलीफिकेशन अक्रॉस फाइनेंशियल रेडियो, डिजिटल एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स, रिलेटिव मीडिया लेकर आया है आपके लिए. इट गिव्स योर बिजनेस अ कंप्लीट कॉन्टेंट सोल्यूशन ऑल इन वन प्लेस. तो चाहे you need better content, you need stronger visibility, or you want bigger audience, relative media can help you help your brand stand out. Aapko kya karna hai? Aapko is number pe call karna hai. If you have any questions, to aap booking kara sakte hain apne content audit ki. Koi sawal hai aapka, uska jawab hasil kar sakte hain. Wo number hai 4694243188. 4694243188 is that number. Relative Media powered by Fanasia Network. This is, your content, but it will be our reach and the impact will be extremely bigger.

और इसी के साथ इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द वेदर अपडेट. वैसे 4:30 के बाद ये सेगमेंट आता है, लेकिन मंडेज आर स्पेशल बिकॉज हमारे साथ कनेक्ट करेंगे 4:30 से 5 o'clock तक माथुर लॉ ऑफिसर्स के अटर्नी संजय माथुर जी. यू विल बी एबल टू आस्क योर क्वेश्चंस लाइव रिगार्डिंग सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल इंजरी, फैमिली लॉ एज वेल एज इमिग्रेशन लॉ. कोई भी आपका सवाल है, यू कैन गिव अस अ कॉल. ही विल बी हेयर फ्रॉम 4:30 टिल 5 PM. और एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मैं होल्ड पे डालती हूँ, आपको सुनाई दे रही है उनकी आवाज अपने फोन पे और वो किसी प्रीवियस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, तो प्लीज होल्ड योर स्पॉट इन लाइन बिकॉज दैट मीन्स इफ यू कैन हेयर हिम दैट मीन्स यू आर नेक्स्ट इन लाइन एंड यू विल बी आंसरिंग द आस्किंग द क्वेश्चन नेक्स्ट. तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंटली अपने स्पॉट को होल्ड कीजिएगा. जैसे ही माथुर जी अपना क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, आपकी बारी आ जाएगी. तो विद दैट दैट सेगमेंट विल स्टार्ट इन अबाउट 5 to 10 minutes. दिस इज वेदर अपडेट टाइम फॉर यू. इट इज 87 degrees इन द सिटी ऑफ मेकिनी, फील्स लाइक 89 राइट नाउ. दैट इज October 12th, मंडे 4:25 PM. दिन रहा सनी, हाइज इन द अपर 80s, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लियर इन द इवनिंग, देन बिकमिंग पार्टली क्लाउडी. ह्यूमिड होगा विद लोज इन द मिड 70s. Pollen count is 8.7. Ragweed, cedar and juniper is what is bothering. UV index is 7, which is medium high. Sunrise aaj ka hua 7:28 AM. 728 AM. Jabki aaj ka sunset hoga 6:57 PM.

0: gotcha. Kick it.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Mandir, DFW Hindu Temple Society presents Navaratri Mahotsavam, October 11th to 20th.
3: Daily Pujas, Aartis, Lalita Sahasranamam, Maha Mangal Aarti, Mataji Puja, aur har sham 8:30 baje Ras Garba.
4: October 16th, 17th, Saraswati Puja aur Akshar Abhyasam.
3: October 17th, Mata Ki Chauki.
4: October 18th, Durgashtami Havan. Aur 20th, Ram Leela aur Ravan Dahan.
3: Visit hindutemple.org or call 972-445-3111.
5: भूख लगी
6: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
1: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
7: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट sometimes, इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 ईयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897, or visit astrologerishwar.com.
4: Welcome to the Shadi Memory Test. Rapid fire round start karte hain. Decorations ka color.
2: Next question.
4: Bride ki entry song.
2: Yaad nahi.
4: Buffet mein kya tha?
2: Chana papri chaat, bihari kebab, dilli nihari, achari chicken, mutton biryani.
3: Shadi mein baaki details bhool sakte hain, lekin khana kabhi nahi. Gatherings 50 ki ho ya 500 guests ke liye, choose signature cuisines, customized catering, live cooking stations and professional service. Call 972-905-5449. Signature cuisine, the taste your guests will remember.
8: Beta, 95% aaye?
9: Haan mummy.
8: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
8: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: Stop! Festive fashion check. Navratri ke outfits ready hai?
9: Do chaniya choli hai. Mix and match kar lungi.
11: Fashion violation. Same outfit ko 9 raat overtime.
9: To solution?
3: Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Explore a stunning collection of stylish contemporary chaniya cholis for a new look every day in Navratri. Planning a wedding? Discover quality wedding and customized bridal wear for men and women at great prices. Call 945-444-2194 or explore jyotikapateldesigns.com. Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Designed for celebrations.
12: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
13: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
14: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
13: Miss Clicks?
15: 100 logon ne click bhi kiya.
13: Customers kitne aaye?
0: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
5: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
14: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
15: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 PM to 7 PM for music, musti or full-on entertainment. Bindas, powered bolo. By Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Phanasia Radio par.
16: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

0: लड़कियां कहती हैं आजकल कि यार कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहती हैं। एक तो मेरी शादी हो गई, दूसरा मैं घर से निकलता ही कम हूँ, आया भी वापस।
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest. Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show, and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
4: एलविंग वालों ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
5: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में। इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है। हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
6: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
5: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
6: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
2: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
7: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
0: लैपटॉप में।
7: इन्वेस्टमेंट,
0: गूगल ड्राइव,
7: इंश्योरेंस, पासवर्ड्स।
0: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
7: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
8: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
5: तो बताइए, आजकल स्ट्रेस किस बात का है?
9: डॉक्टर साहब, हर महीने वही कहानी। इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भी बढ़ जाता है, कस्टमर सर्विस डोंट आंसर, और रिन्यूअल के टाइम बस नए सरप्राइजेस। सच कहूँ, बिजनेस कम, टेंशन ज्यादा है।
10: क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं?
5: यू नो, आपको थेरेपी की नहीं, तारा कमर्शियल एनर्जी की जरूरत है।
2: 2002 से तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सास के बिजनेसेस को कम्पेटिटिव कमर्शियल एनर्जी प्लान्स और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट दे रही है। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com।
11: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
12: कितनी लंबी लिस्ट है?
11: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
12: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
13: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
14: A.R. Rahman, live with a full orchestra. Experience the Grammy and two-time Academy Award-winning composer behind Slumdog Millionaire like never before. The A.R. Rahman Symphonic Experience brings his iconic music to life in an extraordinary symphonic celebration, October 29th at Texas Trust Credit Union Theater. One night, a live orchestra, the music of A.R. Rahman. Don't miss it. Get your tickets now.

0: वैसे ना मैंने देखा है कि अक्सर लड़कियां ये कहती हैं, आपने भी देखा होगा कि जो सब लड़के हैं ना वो एक जैसे होते हैं, हर मर्द एक जैसा होता है, पर फिर एक आधी दो लड़कियां ऐसी होती हैं जो कहती, नहीं, मेरे वाला ना डिफरेंट है, मेरे वाला अलग है, नहीं तुम्हारे वाला अलग है, वो अंडे देता है। पांच बज के 25 मिनट स्टूडियो की घड़ी में हो चुकी हैं जी, मैं रहूंगा आपके साथ ऑल द वे टिल 7 o'clock, अक्टूबर 12। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, है ना। उसके वाला मेरा डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, नहीं तुम्हारा अंडे देता है, यार हद होगी, सब आदमी एक जैसे ही होते हैं यार, इसमें कोई दो राय है नहीं वैसे। और हम सब अमेजिंग होते हैं यार, देखो मोदी जी भी तो आदमी है ना, हम अब देखो कमाल के लोग होते हैं यार।
1: रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है।
0: October 12th also marks National Farmers Day right here in the United States. जब भी हम देखते हैं Midwest states की तरफ this time of the year, आपको दिखेगा जी सारा जो combines हैं वो roll कर रही होती हैं, dawn till dusk gathering the golden bounty of the harvest. And today we celebrate this wonderful day, which is the Farmers Day, the backbone of our I would say world. यार जो खाना है उसके बिना तो कहाँ ही जाना है, right? So a big shout out to all the farmers today celebrating National Farmers Day right here in the United States. You are listening to the Evening Drive Time show, and this part of the show is brought to you by none other than Navneeta Khemka, jo ab ban chuki hai ji realtor. She's now a realtor with Keller Williams. If you're looking to get a home, sell a home, get in touch with Navneeta. She will take excellent care of you, and I know that because she's excellent at what she does. Kaam karti hai hamare sath bahut saalon se, and now she is giving you the opportunity to get her dream home with your dream home with her. Her dream home with you, hai na? Chalo aisa bhi kar do, donation dene mein koi jata nahi kisi ka. तो नवनीता खेम का नाम याद रखिएगा जी. टेकिंग यू टू द नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर, लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल नंबर.

0: वंडरफुल मूवी एंड अ वंडरफुल ट्रैक दिस वाज रांझा टेकन फ्रॉम द मूवी शेरशाह जहां पे जी इनकी स्क्रीन लव स्टोरी एक्चुअल लव स्टोरी में बदल गई जनाब एंड यू कुड फील दैट व्हाइल यू वर वाचिंग दैट मूवी नॉनदलेस राइट नाउ इट इज द टाइम टू गेट यू सम ग्रेट इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम यूजुअली यू नो हम वी टेंड टू हमें पता तो है बट कहीं ना कहीं एक इंसानियत ऐसी चीज़ है कि हम इग्नोर तो उसको करते ही यार है ना हम तो अपनी लाइफ को इग्नोर करते हैं हमें पता होता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है हम फिर भी करते हैं बट एट द एंड ऑफ इट ऑल वॉट यू वर्क हार्ड फॉर जो आपकी हार्ड अर्न इनकम है जो आपके बच्चे हैं उन तक वो पहुँचनी बड़ी ज़रूरी है एंड दैट इज़ वॉट यू वर्क हार्ड फॉर एंड इवन फॉर योर सेल्फ एज यू रिटायर यू वॉन्ट टू हैव द राइट प्लानिंग फॉर दैट वी हैव NRI वेल्थ एंड दीप्ति वर्मा हु हेल्प्स यू गाइज वन इट कम्स टू एनी ऑफ योर फाइनेंशियल नीड्स नाउ हर वेबसाइट इज वेरी सिंपल इट्स NRIwealth.com हर फोन नंबर इज 6692435799 लेट्स वेलकम हर ऑन द एयर्स ऑफ फन एशिया गुड इवनिंग दीप्ति हाउ आर यू
1: Good evening, Marvin. Very well. I'm doing well. Hope everybody's doing great.
0: All right. Now, you know, we've been talking and I'm sure DFW listeners कहते हैं कि Marvin यार you आप जो information लाते हो is very valuable and we need to have some more clarity on some more issues that might come in life and one of those issues can be that let's say tomorrow if I have a son he has some medical condition due to which he needs lifetime support and care in that situation can a trust give that security to my kid in that sort of a situation, if you could please throw some light there.
1: Sure, Marvin. Thank you so much. Yes, you know...
0: Oops, the call dropped, I guess, but no worries. Jab tak hum aate hain ji wapas, here we go.

भाई देखो, मुझे इनका तो पता नहीं, मुझे तो आप लोगों से प्यार हो चुका है, रेडियो से मुझे वैसे ही प्यार है और इसी प्यार को बरकरार रखते हुए आ चुका हूँ जी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. दिस पार्ट ऑफ आवर शो जो जी आपके लिए लेके आते हैं सारे हमारे क्लाइंट्स हैं विच सपोर्ट दिस स्टेशन एंड दैट्स हाउ हम यहाँ पे हैं. भैया टेक्सास स्टार रिहैब के बारे में बता दूँ, दे हैव टू लोकेशंस फॉर यू, दैट्स अ रिहैब एंड अ परफॉर्मेंस सेंटर. और ये लोग क्या करते हैं जी, एक्सपर्टीज है इनकी टू मेक श्योर कि आप लोग फिट रहें एंड पार्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस इज विद मी ऑल्सो. आई हैड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कुछ साल पहले एंड रुशीद द प्रैक्टिशनर आई वेंट टू हिम आफ्टर माय द पोस्ट रिहैब जिसको बोलते हैं, आपको जाना पड़ता है आफ्टर पोस्ट सर्जरी रिहैब बोलते हैं उसको, यू हैव टू गो देयर एंड ट्रस्ट मी दीज गाइज आर एक्सेलेंट एट व्हाट दे डू. उसके साथ साथ वो तो उन्होंने किया ही, बट आई हैड सम इशूज इन माई नीज एंड आई वुड कंप्लेन एंड रुशी गेव मी सम एक्सरसाइजेज, वो करी एंड सम न्यूट्रिशन थिंग्स दैट आई कुड चेंज इन माई लाइफ स्टाइल एंड थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गुडों में चौंकाऊ ना हो और आपकी पीठ में जो कुकड़क बोलता है वो भी ना हो, तो आपको जाना है जी टेक्सास स्टार रिहैब. फर्स्ट लोकेशन इज इन अर्विंग राइट ऑन बेल्ट लाइन 635. द अदर वन इज द स्टेट ऑफ द आर्ट लोकेशन इन फ्रिस्को. दोनों जगह पे मिलती है आपको फिजिकल थेरेपी, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन, पेल्विक फ्लोर थेरेपी, मसाज थेरेपी एंड मोर विद पर्सनलाइज्ड वन ऑन वन केयर. जाना है आपको वेबसाइट पे texasstarrehab.com texasstarrehab.com एंड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. और बताइएगा कि मार्विन ने कहा है क्या मुझे आपके पास आना है इफ यू हैव चाउमा गोइंग ऑन इन योर नीज. वन मोर ट्रैक इस गाने के बाद आ रहा है जी गिव अवे कमिंग अप फ्रॉम बिरिस्टा हाउस.

ये गाना जी वैसे तो सिंगलिस में है, दिस इज अ श्रीलंकन लैंग्वेज सॉन्ग एंड उसको बाद में ये हिंदी वर्जन बनाया गया बिकॉज द सॉन्ग वेंट बूम पॉपुलर हो गया ऐसे, मतलब जैसे आप समझ लो नो हद ना, मतलब फटाफटी आज गाना आया, दो तीन दिन में वायरल और उसके बाद पूरी दुनिया में बज रहा था भाई। मैं आई वॉज इन इंडिया दैट टाइम व्हेन दिस सॉन्ग केम, मैं और मेरा दोस्त गाड़ी में जा रहे हैं, हमें सिंग्लिश आती नहीं है, एक भी वर्ड नहीं पता क्या बोल रही है, बस हम खुश हैं कि वो माँ की ने माँ के हिते बस ठीक है ठीक है। मुझे लगा जो भी है माँ के हक में है क्योंकि माँ

0: टाइम व्हेन द सॉन्ग केम, मैं और मेरा दोस्त गाड़ी में जा रहे हैं, हमें सिंग्लिश आती नहीं है, एक भी वर्ड नहीं पता क्या बोल रही है, बस हम खुश हैं कि वो माँ की ने माँ के हिते माँ की हिते, बस ठीक है ठीक है. मुझे लगा जो भी है माँ के हक में है, क्योंकि माँ के हिते समथिंग लाइक दैट. बट ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बड़ा जबरदस्त गाना बनाया, एंड दैट्स व्हाई इट इज देयर. ऑलराइट, गिव अवे का टाइम आ गया है जी. बिरिस्ता हाउस लोकेटेड है आपके लिए राइट इन द हार्ट ऑफ फ्रिस्को. इट इज ऑन 121 एंड कस्टर, इस इंटरसेक्शन के बिल्कुल पास है. आपको वहां पर मिलता है जी जबरदस्त नॉर्थ इंडियन फूड, उसके साथ साथ दे हैव अ फुल सर्विस बार एंड दे हैव सम ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी. वो मैं खा चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, जबरदस्त बिरयानी बनाते हैं. मैं एक बात बोलूंगा और आपको बताना है कि इफ द वाइफ सेड दिस जो मैं बोलूंगा तो पति को आगे से क्या कहना चाहिए. क्लोजेस्ट आंसर, द मोस्ट वंडरफुल आंसर, डिफरेंट आंसर, मजेदार आंसर, वो जीतेगा जी ये बिरयानी. याद रखिएगा कि बिरयानी नहीं, $20 है, $20 का गिफ्ट कार्ड मिलेगा आपको, विच यू कैन यूज देयर वाइल यू डाइन इन. तो उनको जाके मत बोलना भैया कोई टुकड़ा का जुगाड़ नहीं है भैया, डाइन इन का ऑफर है एंड इट इज इन फ्रिस्को. तो जब आंसर देंगे तो मेक श्योर करिएगा कि आप फ्रिस्को जा सकते हैं. ओके, सवाल यह है, बीवी ने अपने पति से पूछा, बोला रादर, देखते ही देखते कब 10 साल निकल गए पता ही नहीं चला. अब इसके आगे पति को क्या जवाब देना चाहिए है जी, या क्या जवाब होगा. मैं होता तो मेरे पास तो है मेरा जवाब, आप लोग बताइए कि आप लोग क्या जवाब देते, या लेडीज आप भी बता सकती हैं कि आपका पति आपको वापस घूम के क्या बोलता. देखते ही देखते कब 10 साल निकल गए पता ही नहीं चला, है ना. तो बताइए जी, 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. अगर आप अपनी बीवी को इसके आगे कुछ बोलते तो क्या बोलते. मेरे पास जवाब है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, बट उसके क्लोजेस्ट भी चलेगा और कोई ज़बरदस्त आउट ऑफ द बॉक्स पटाखेदार जवाब, वो तो पता ही आपको कि मसाला चटनी बहुत पसंद है मुझे यार. Here we go. Good evening. Fun Asia. Who's this?
1: तो सवाल जो है ना, जवाब उसका है कि पत्नी को जो है ना वो अवार्ड मिलना चाहिए कि 10 साल एक आदमी को संभाला
0: है. वो बात तो ठीक है आपकी मैम, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आपका भी ना मैंने देखा है कि आपको बच्चों के साथ साथ अपनी सास का बच्चा भी संभालना पड़ता है. आपका नाम क्या है?
1: बिल्कुल रजिया.
0: रजिया जी कैसी हैं आप, सब ठीक है?
1: शुक्र शुक्र.
0: आंसर मैंने आपका नोट कर लिया है, देखते हैं आप सही हैं कि नहीं. गुड इवनिंग फन एशिया, हु इज दिस?
2: भरत.
0: भरत भाई क्या हाल है?
2: बढ़िया सर, आपके कैसे हैं?
0: मैं टनाटन बॉस, बाकी आप बताओ सब ठीक ठाक?
2: यस सर, थैंक यू फॉर आस्किंग.
0: बताइए जनाब, तो अगर आप होते तो क्या जैसे मैं पत्नी हूँ आपकी, भाभी बोल रही है देखो देखते ही देखते कब 10 साल निकल गए पता ही नहीं चला, अब आप बताओ.
2: आपके देखते देखते निकल गए, मेरे सुनते सुनते निकल गए.
0: ऐशा बात, सुनते सुनते निकल गए वाला. आपका नाम बताइए, आपने क्या बोला था?
2: भरत.
0: भरत भरत भरत भरत भरत, आई हैव योर आंसर लॉक्ड इन. लेट्स सी हु इज नेक्स्ट विद अस. गुड इवनिंग फन एशिया, हु इज दिस?
3: यस, दिस इज फरहत अली काजी.
0: काजी साहब कैसे हैं?
3: बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक ठाक.
0: काजी साहब बताइए क्या कहते हैं आप?
3: मैं ये कहता हूँ कि बेगम से फिर ये कहना चाहिए कि जाहिर है आपको थोड़ी पता चलेगा, पता उसको चलेगा जो आपके साथ है.
0: आपको थोड़ी पता चलेगा. चलो चलो चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू काजी साहब. सुनते रहे फन एशिया, देखते हैं आप जीतते हैं कि नहीं. इट इज फन टू डू दिस. आप कहाँ पे हैं भाई, सब्जी मंडी में है कि एयरप्लेन में है, खिड़की खुली हुई है? दीदी भैया कौन है आप?
4: अरे सब बंद है, सब जगह से बंद है.
0: तो ये ब्लूटूथ से हटाओ ना भैया, ये तो ये हम रजामंद नहीं है.
4: अच्छा अब कैसा है आवाज?
0: अब अच्छा है ना. देखो पहले लग रहा है जैसे कि सब मोटरसाइकिल में जा रहे हो आप और पीछे मतलब थैले थूले लगे हुए आपके, फटफटाट फटफटाट होती जा रही थी. नाम क्या है आपका बड़े भाई?
4: मेरा नाम है राज.
0: राज, नाम तो सुना होगा. राज भाई क्या कहते हैं आप?
4: हाँ
0: है,
4: सजा का पता. जवाब ये है कि सजा का पता तो कैदी को लगता है, जेलर को नहीं.
0: सजा का पता कैदी को लगता है, जेलर को नहीं. बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया आपका. एंड आई एम गोना गो टू द लास्ट कॉलर हियर. गुड इवनिंग फन एशिया, आपका नाम?
5: हाय मार्विन, मेरा नाम पवन.
0: पवन पहले भी चले हो तुम पिछले हफ्ते हमारे यहाँ पे. यहाँ से रेडियो पे बात हुई थी ना पवन आपसे पिछले हफ्ते, पिछले सप्ताह?
5: मे बी अ कपल ऑफ मंथ्स अगो.
0: कपल ऑफ मंथ्स अगो, चलो कोई बात नहीं. हमें शीतल पवन का वैसे ही शौक है. बताओ पवन क्या कहती तुम्हारी हवा?
5: So it's actually 11 or 12 years and the wife is trying to test him by saying 10 years if he really knows if it that it has been 11 or 12 years. She's just trying to test him.
0: पवन भाई बड़ा डिफरेंट से आंसर निकाल के लाए हैं, कहते हैं देखो क्या हुआ है. बहुत बहुत बढ़िया पवन भैया, थैंक यू फॉर योर कॉल. बट आई थिंक यार मुझे जो जवाब जबरदस्त लगा ना, और आपको भी लगा होगा कि जो

वो बंदा था ना जो बोल गया भरत भाई कि यार, वो कहती देखो देखते देखते 10 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बोला भाई देखते देखते तेरे निकले हैं, हमारे तो सुनते सुनते निकले हैं ना। भरत भैया गिव मी अ कॉल, आई विल गेट यू योर डिटेल्स एंड गेट यू दैट लवली गिव अवे फ्रॉम द वन एंड ओनली बरिस्ता हाउस। फॉर नाउ आई एम टेकिंग ड्यू टू अ ब्रांड न्यू ट्रैक जो आया है जी, इन द वॉइस ऑफ तलविंदर विद किरजे वेस्ट एंड NDS, ब्रांड न्यू बैंगा मंगदा वापस क्यों। Bharat, if you're listening to me, give me a call.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Hire moti, main na chahu.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewel in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
9: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
10: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
9: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
11: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
12: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
11: Miss Clicks.
13: 100 logon ne click bhi kiya.
11: Customers kitne aaye?
14: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
15: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Fun Asia Network product.
16: Shopping? बिल्कुल, पर कहाँ? Festive looks के लिए वही दो से तीन options?
15: Options? I will give you the latest destination.
0: Introducing Pooja's Trends. Lehengas, co-ord sets, fusion wear, shararas or jewelry. Premium quality, affordable prices. Grand opening sale, flat 15% off. Visit 10202 Coit Road, Suite 400, Frisco. Call 214-457-4897. Pooja's Trends. Your trend, your style.
17: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
18: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
17: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
18: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट. फ्लोर्स क्लीन,
19: चेक.
18: विंडोज क्लीन,
19: चेक.
18: किचन क्लीन,
19: चेक.
18: एयर डक्ट्स क्लीन.
19: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
15: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dry vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
20: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
21: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame.
1: जहां तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
21: हर मोहब्बत की आवाज द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान
22: राहत फतेह अली खान
23: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026 राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर
21: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस फ्राइडे अक्टूबर 16 8:30 PM कमेरिका सेंटर फ्रिस्को
23: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशंस के साथ
21: टिकट्स ऑन टिकटमास्टर एंड सुलेखा.com

0: मेरे मन को भाया, मैं खीरा काट के खाया, जिसने जो खाना है वो खाओ यार, फ्री फ्री मिल है भाई। Alright, welcome back to your evening drive time show, the 6 o'clock hour. It is 6:06 in the studio clock, 6:06. मैं रहूंगा जी आपके साथ 7 बजे तक, Monday to Thursday, 5 से 7 बजे तक आपको देता हूँ जी company. First of all, I want to wish all the smiley community here in DFW and beyond, all of our listeners, all of my friends, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. Everybody who's celebrating today, 12th of October, Ismaili Muslims around the world are celebrating the joyful occasion of सालगिरह खुशहाली. तो भैया जी हमारी तरफ से, फनी जिया की पूरी टीम की तरफ से, आरजेस की तरफ से आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक. एंड जैसे खुशी का मौका होता है जी, तो हम सब एक एक एक फेस्टिव वाइब और खुशी जो है ना, ये जब भी हम साथ लोगों के मनाते हैं उसका ज़्यादा मज़ा आता है. इसके आज का दिन जो है दी वर्ड सालगिरह, जो सालगिरह वर्ड है वो पर्शियन वर्ड है, जो कि वर्ड साल यानी कि ईयर से निकलता है और गिरा यानी कि नॉट. तो ये जो बंधन है सालगिरह का वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जी हम विद द इस्माइली मुस्लिम्स अराउंड DFW, द वर्ल्ड एंड आर फ्रेंड्स इन द कम्युनिटी. आपको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो. आई एम गोना टेक यू टू द नेक्स्ट ट्रैक. उसके साथ साथ आपको बताऊंगा जी कि दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. हम यूजुअली अपनी केयर तो हमने क्या ही करनी है, टाइम ही नहीं होता जी हमारे पास. बट आपका भी यही सिचुएशन है, आपके पास टाइम नहीं है, आप सैटरडे को डॉक्टर से मिलना चाहते हैं और आपकी जो काम है वो अलाउ नहीं करता और डॉक्टर साहब सैटरडे को नहीं होते, तो आपके लिए डॉक्टर शेरिल शमाथिल आ चुके हैं जी, बोर्ड सर्टिफाइड फैमिली मेडिसिन फिजिशियन फ्रॉम पैशन हेल्थ. ये अवेलेबल है सैटरडेज को फ्रॉम 9 AM टू 1 PM. तो अगर आप मेरी जैसी सिचुएशन में जहां पे आपको वीकेंड पे डॉक्टर को मिलना है, तो आपके लिए अरेंज किया जा सकता है विद देम. दे आर लोकेटेड ऑन 230 ओकॉनर रिज बुलेवार्ड, स्वीट 110 इन इरविंग, टेक्सास. गिव देम अ कॉल 214-666-6259. व्हाट अ रिव्यू फ्रॉम दृश्यम 3, कह रहे हैं जी जबरदस्त है, मैंने अभी तक नहीं देखी है. आई एम वेटिंग टू सी इट, बट आई एम श्योर दिस वन इज गोना बी पावर पैक्ड. एक पावर पैक्ड गाना उसी की तरफ से, फ्रॉम दैट मूवी कमिंग अप कॉल्ड गेम ओवर.
1: इतने पर मजबूर करता है, तभी तो ये कहानी में वो गलत होके भी हीरो है और हम सही होके भी विलेन.
2: तुझे तो सब की खबर है, अगर मगर है, सफर में सफर है, कांटे की डगर है, हर कदम खबर है, हर जगह मर्डर है, सामने खूनी है, जाकर अब अगले रह गया, अकड़ में नहीं आया पकड़ में, कैसी दिनचर्या के अकल पे पत्थर है, जनवरी शक्कर आया, अक्टूबर है मुके और थप्पड़ी दिमागी टक्कर है, बच्चों का खेल नहीं अकड़ बकड़ है, हक्का बकर है तू.

का खेल, झूठे पर शूट का खेल, सच और झूठ का खेल, कच्चे सबूत का खेल, सच और झूठ का खेल, हाँ कैसी लूट मचे, सच और झूठ का खेल, ये कच्चे सबूत का एसेट। गेम ओवर, तुझे तो सब की खबर है, अगर मगर है, सफर में सफर है, कांटे की डगर है, हर कदम कवर है, हर जगह मर्डर है, सामने कोनी है, जाकर अब अगले रह गया, अकड़ में नहीं आया, पकड़ में कैसी दिनचर्या के, ये कल पे पत्थर है, जनवरी शक्कर आया, अक्टूबर है, मुक्ति और तपन्नी दिमागी टक्कर है।

यार कह रहे हैं कॉलर आए मेरी, मतलब वैसे तो मेरी मम्मी जैसी हैं, शी इज लाइक अ मदर टू मी, उनका नाम रेखा जी है। रेखा जी कहते हैं यार ये फिल्म तो उतर गई है मार्विन, एक ही हफ्ते के लिए लगी थी, यार ये क्या बात हुई, हमें फिल्म वालों को कॉल करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग दोबारा करवानी पड़ेगी, मार्विन ने फिल्म देखी और तुमने फिल्म उतार दी, क्या कर रहे हैं डैलस, कर दें प्रोटेस्ट एक आप, हम सब मिलके बहुत पावर है हम में, चलो अगर आपको पता लगे कहीं और लगी है तो मुझे जरूर बता देना भैया, नहीं तो वेट करूंगा कब आएगी OTT पे या इंडिया जाऊंगा, तब तो इंडिया में थिएटर में थोड़ी लगी रहेगी मार्विन, क्या बात करता है तू। नेशनल गम्बो डे है जी आज के दिन, इफ़ यू हैड अ गम्बो इट इज़ अ वेरी कम्फर्टिंग फूड, बहुत अच्छा लगता है मुझे, स्पेशली अगर अच्छे से बनाया हो। आज के दिन मनाया जाता है जी नेशनल गम्बो डे, 12th of October, दर इज नो बेटर वे टू वार्म अप फ्रॉम द इनसाइड आउट विद दिस सोलफुल स्टीमिंग बोल ऑफ गम्बो, बड़ा ज़बरदस्त है, मुँह में पानी आ रहा है। And the Gumbo Day is actually a tribute to the official state cuisine of Louisiana. अगर आप Louisiana जाएं तो मेरे कहने पे Gumbo एक बारी ज़रूर try कीजिए, a true American culinary masterpiece है जी, and this is something that you should definitely try. And if you love Gumbo, आपका कोई favorite spot है यहाँ पे तो वहाँ जाके आज इसको ज़रूर खाइएगा। Today is also Columbus Day, which is the reason why we have a federal holiday today. Columbus Day एक federal holiday मनाई जाती है that observes on the second Monday of October. The day commemorates the arrival of क्रिस्टोफर कोलंबस इन दी अमेरिकाज, आ गया था भाई था अपना, मैंने भेजा था इसको, मतलब बता रहा हूँ ना मैं, सेकंड जन्म है ये मेरा, पहले मैं, इसने पूछा मैं क्या करूँ मेरे को फेमस होना है, मैंने कहा तू बेटा नैया ले और इस तरफ को निकल ले, कहता किस तरफ को, मैं कहा इस तरफ को, बस इसने मेरी बात सुनी है उस तरफ को निकल गया और देख लो ऐसा हो गया। अच्छा आप कहोगे आप मारो ना ऐसे मारता रहता, नहीं ये शहर कौन सा है जहाँ हमारा स्टूडियो, इसका है नाम है मिकिनी, आपको पता है मिक्की माउस होता था और मिनी माउस होती थी, ठीक है, इन दोनों की शादी टेक्सास में हुई थी, अब ये मिकिनी का नाम मिकिनी कैसे पड़ा कि जब मिकी माउस और मिनी माउस की शादी हुई उसके बाद जब बच्चा हुआ तो उसका नाम मिकिनी रखा गया और वो यहीं पैदा हुआ था मिकिनी में, बस तब से इस शहर का नाम मिकिनी हो गया। टेंशन नहीं, नॉलेज बहुत है। मिकी माउस मिनी माउस की बेटी मिकिनी।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Hey, तुमने कभी insurance लिया?
4: लिया।
3: कभी policy समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772। That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़र वे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
7: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सस के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए, और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
2: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyers agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
8: Every home has a story. Let's create yours together.
9: Agar kisi cheez ko dil se chaho,
10: to pehle check kar lo uspe deal hai ya nahi.
11: Deal? Kaha?
10: Simple, Paasya pe. Introducing Paasya. Discover exciting deals and offers at restaurants near you right now. Open Paasya, see what's around you, find a deal and grab it before it's gone.
2: Download Paasya, that's PAASYA today, because deals dur nahi, paas hai.
12: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libaas khushiyon ko dugna kar deta hai.
2: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
13: Dil ki baat kisse kahein?
14: पंडित गुरुदेव से 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 4695811777, दैट्स 4695811777। पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
15: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: कहते हैं कि अपना दुख सुख जो है ना, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर करना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि आज मैं ना अपनी दुख भरी कहानी आपके साथ शेयर कर ही लूँ। तो लो सुनो मेरी दुख भरी कहानी। क्या मणे मणे मणे मणे मणे मणे मणे मणे धड़। मुझे पता था आपको मेरा दर्द समझ ही नहीं आना।
1: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: ऐसी ना एक लड़की बेचारी बहुत देर से तपस्या कर रही थी। तपस्या करते करते उसने बड़ा जोर लगाया जी, भगवान प्रकट हो गए। भगवान आए, कहते क्या बात है भाई के, तू इतने जोर से लगी हुई है, इतने दिनों से लगी हुई है। मैंने कहा मैं खुद ही नीचे आके पूछूं। कहती बात यह भगवान, खैर छोड़िए आप नहीं समझेंगे। रस पीने की प्यास है। 6:25 स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं जनाब। देखा फिर मकीनी का नाम पता लग गया ना आपको। जिन्होंने नहीं पता बता देता हूँ दोबारा से। मिक्की और मिनी जो कार्टून थे ना, उनकी शादी हुई थी यहाँ टेक्सास में। उसके बाद उनकी हुई बेटी, उसका मिक्की और मिनी है ना, तो उसका नाम उन्होंने रखा मकीनी। बस उसी से प्रसन्न होकर यहाँ पे इस शहर को नाम मकीनी दे दिया गया था। मैंने कहा जो मिस कर गया बता देता हूँ। एक और बात सोचने वाली है। कहा जाता है कि 5 किलोमीटर दौड़ने से जिंदगी के 20 मिनट बढ़ जाते हैं। कहते हैं ना ऐसा, यू शुड रन और एक्सरसाइज 5 माइल एंड दिस एंड दैट एंड देन आपकी जिंदगी 20 मिनट लंबी हो जाएगी। अरे भैया, 5 किलोमीटर दौड़ने में आधा घंटा जाएगा वो।
1: चमेली गेंदा सब रास है, रस पीने की प्यास है बंदा।
0: Alright, let's take you to the next track right here on Fun Asia। गाने रुकने नहीं चाहिए बॉस, क्योंकि यही तो हमारा काम है जी, गाने और बातें। और मैं तो आया हूँ जी एक ही चीज करने, ठीक है जी, आप लोगों को हंसाने, कुछ स्माइल पाने आपके चेहरे पे और अपना घर चलाने। तो बस चला रही हूँ।

guy that played the Wolverine, Mr. Hugh Jackman, is celebrating his birthday today. He was also Van Helsing, which is one of the movies that I really enjoyed from him. Aaj ke din unka bhi janmdin hota hai ji, 12th of October 1968, born in Sydney, Australia. He's 58 years of age and Libra by birth. Somebody who's given a lot of movies like The Front Runner, jaise maine kaha, X-Men film series mein bhi nazar aaye as Wolverine, which is one of the most loved characters of him, I believe so. Prisoners, The Prestige, and Pan, which is Peter Pan, which is another movie that I really, really enjoy, bhai. Chalo, India aur Pakistan, West Indies ki baat karte hain janab. India Pakistan ki to kya hi baat karun, final tha. वो याद है ना, मौका मौका वो याद आ जाती है मुझे जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात करता हूँ. खैर, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट. और जो इंडिया पाकिस्तान की ये जो मज़ेदार राइवलरी है ना, यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त पाकिस्तानी हैं, मैं इंडिया से हूँ, एंड जब भी ये मैच होते हैं तो जो हमारे आपस में बीच में जोक चलते हैं ना, उनको देख के और महसूस करके बहुत मज़ा आता है. नॉनदलेस, इंडिया वॉज प्लेइंग वेस्ट इंडीज दिस पास्ट वीक एंड वीकेंड रॉल. इंडिया वन दैट गेम बाय 14 रन्स. इट वॉज अ डिसेंट गेम. 223 वॉज द स्कोर दैट इंडिया पुट अप. उसमें से अभिषेक शर्मा, ऑलवेज समबडी हुम आई लुक आफ्टर, के लुक आउट फॉर कि भाई ये इस गेम में क्या करेगा. 69 ऑफ 30, वंडरफुल प्ले. ईशन किशन कमिंग in support, 37 of 18, and Tilak Verma, another gem for India, 28 of 16, 223 in their 20 overs, and West Indies got to 209 for 7. India won that game. Chalo, badhte hain ji aage. Two more games in this series, that is a 5 T20 series with West Indies. I'll keep you posted. Agar aapka match miss ho jaye, koi tension nahi hai, main baitha hu na bhaiya, kar denge aapka sara update which you need from the game. Right here on Fun Asia. Here we go with a beautiful number. और जैसे मैंने कहा था, एक गाना था जो मैं चलाना चाहता था, but वो गाना थोड़ा लंबा है. And this is the right time to play this song. ये जो फिल्म आई थी, I fell in love with the music of this movie. I think it was very ahead of its time. बहुत जबरदस्त म्यूजिक दिया था. And you know, I was having a trip with my family. We went to Manali. और उसका जो ड्राइव पे इन गानों को सुनने का मजा आया था, fantastic.

0: वंडरफुल ट्रैक, वंडरफुल फिल्म, गुप्त गुप्त और यू गुप्त गुप्त, बड़ा जबरदस्त साउंड ट्रैक था ना इसका। जो जो मेरे से अग्री करते हैं हाथ उठाओ। नहीं नहीं, मुझे कौन सा दिखना है, उठाना नहीं भैया, गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ। गाड़ी चला रहे हो और अगर कहीं फंसे हो तो ऊपर वाले का धन्यवाद हमेशा करना है, ठीक है। और अगर भाभी साथ नहीं है तो लेफ्ट राइट देख सकते हो कि कौन सी गाड़ी के नए मॉडल आए हैं। यार हर बार गलत थोड़ी सोचते रहते हो तुम, यार क्या करते हो यार, ऐसा नहीं करते। ये देखना होता है गाड़ी का कौन सा मॉडल आया। आजकल ईवी बड़ी आ रही है ना, तो देखते रहा करो थोड़ा जब तक जाम में हो, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर भाभी के साथ भी हो तो गाड़ी वगैरह का वो जो आजकल बैक लाइट है ना वो चेक करा करो, ठीक है। भाभी के साथ जब हो तो बाकी लाइटें, गाड़ी सेफ है, गाड़ी ठीक है, किसी का टायर पंचर वगैरह तो नहीं है। हेल्प करते जाओ ना लोगों की, इसलिए आप देखते हो जब लाइट पे खड़े होते हो, तो देखते रहा करो लेफ्ट राइट, कोई चक्कर नहीं है। बताना होता है बस कि क्या देख रहे हो। देख रहा हूँ कि उस गाड़ी का टायर तो नहीं पंचर, कहीं अगर पंचर हो तो बेचारे को बता दे। ऐसे ऐसे काम, अच्छे अच्छे काम किया करो। आज इंडिजिनस पीपल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, 12th of October। दिस इज द ऑन द सेकंड मंडे ऑफ अक्टूबर हम ऑनर करते हैं डीप रूट्स, रिच कल्चर्स एंड एंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ द फर्स्ट पीपल ऑफ दिस लैंड। इंडिजिनस पीपल People's Day is a vibrant celebration of history, contributions and resilience of Native American tribes across the nation. So a very happy Indigenous People Day to all the natives in and around the US market space. Ek aur minute hai ji hamare paas, iske baad ja rahe hain hum commercial break ki taraf. पर आपको ये बता दूं, आपका ब्रांड अगर चाहता है, यू वांट योर बिजनेस टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, देन इट नीड्स सम हेल्प, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो करी जा सकती हैं, एंड दैट इज विद द एक्सपर्टीज ऑफ रिलेटिव मीडिया व्हिच इज ब्रॉट यू बाय फनेशिया नेटवर्क। आपके लिए कंटेंट बनाएंगे, आपके आई कैचिंग वीडियोज, ग्राफिक्स बना के देंगे आपको, एंड कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एम्पलीफिकेशन ऑफ द प्लान विल बी डन थ्रू फनेशिया रेडियो डिजिटल एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। अगर आप इस पे एडवर्टाइज करना चाहते हैं या फनेशिया पे एडवर्टाइज करना चाहते हैं, आई हैव बीन विद द रेडियो फॉर 20 ईयर्स, 2007 मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, एंड आई कैन सर्टनली हेल्प यू मेक अ प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। 972-302-7012 इज माई फोन नंबर, 972-302-7012। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आया विद लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस इवनिंग ड्राइव टाइम शो। स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया।
1: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
2: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: स्टॉप, फेस्टिव फैशन चेक, नवरात्र के आउटफिट्स रेडी है?
9: दो चनिया चोली है, मिक्स एंड मैच कर लूंगी।
8: फैशन वायलेशन, सेम आउटफिट को 9 रात ओवरटाइम।
9: तो सॉल्यूशन,
10: इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल, एक्सप्लोर अ स्टनिंग कलेक्शन ऑफ स्टाइलिश कंटेम्प्रेरी चनिया चोलीज फॉर अ न्यू लुक एवरी डे इन नवरात्रि। प्लानिंग अ वेडिंग, डिस्कवर क्वालिटी वेडिंग एंड कस्टमाइज्ड ब्राइडल वेयर फॉर मेन एंड वुमेन एट ग्रेट प्राइसेस। कॉल 9454442194 और एक्सप्लोर jyotikapateldesigns.com। इंडियन एथनिक वेयर बाय ज्योतिका पटेल, डिजाइंड फॉर सेलिब्रेशंस।
11: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
12: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
11: नहीं।
12: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
11: नहीं।
12: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
11: वो भी नहीं।
12: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
13: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par. TheJagoTimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada, 682-551-6500. The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
15: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
16: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways, and save big for your store?
15: When is it?
16: Thursday, October 29th, Friday, October 30th, and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
15: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business. Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
17: Saregama Karma.

एस एफ एल वर्ल्ड वाइड, मैं रोज बताता हूँ जी आपको, एक ऐसी कंपनी है जो कि आपके लिए गिफ्टिंग या एनीथिंग टू डू विद शिपिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स और अक्रॉस द ग्लोब. एस एफ एल का मतलब है जी शिप फॉर लेस वर्ल्ड वाइड. फेस्टिव सीजन आ रहा है, देसी आउटफिट्स हो, मिठाइयाँ हो, नमकीन हो, आपकी सारी फेवरेट गुडीज मिल जाएंगी जी आपको. ब्रिंग दम होम विद एस एफ एल वर्ल्ड वाइड. डोर स्टेप पिकअप करते हैं एंड डिलीवरी भी देते हैं. सो अगर आपने कहीं और से मंगवाना है, दिल पिक इट अप फ्रॉम देयर हाउस और योर होम बैक होम इन इंडिया एंड ब्रिंग इट टू योर डोर राइट हियर इन द US. उसके साथ साथ ओशन शिपिंग फॉर लार्जर आइटम्स जैसे कि पूजा मंदिर, झूलाज एंड फर्नीचर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉल कीजिए एंड ट्रस्ट मी यू विल बी हैप्पी दैट यू डिड. इट्स 1-800-691-2335. दैट्स द नंबर फॉर एस एफ एल वर्ल्ड वाइड. लेट्स गो विद मोर म्यूजिक क्योंकि थोड़ी ही देर में हो रहा है जी बाय बाय का टाइम है जी.

मस्त कलंदर सजना विद सजना राजकुमार राव शहनाज गिल। आई डोंट नो राजकुमार राव की फिल्मों की सिलेक्शन कुछ गड़बड़ हो गई है कि एक्टिंग में कुछ लेफ्ट राइट मोड आ गया उनकी लाइफ में, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल फॉर हिम। मेरे को अभी याद नहीं कि मैंने उनकी लास्ट अच्छी फिल्म कौन सी देखी थी। आई थिंक वो देखी थी जिसमें वो बने थे दैट स्टूडेंट जो कि थोड़ा ब्लाइंड होता है, दैट इज़ द मूवी दैट आई थॉट वॉज फैंटास्टिक। उसके बाद जो भी आया है इट हैज़ नॉट स्टूड अप टू यू नो द टैलेंट दैट द गाय हैज़, वो देखने को नहीं मिला है। नन द लेस रिमेंबर द डेट नवंबर 1st, आपने एड्स ऑलरेडी सुननी शुरू कर दी होंगी, द डी एफ डब्ल्यू साउथ एशियन फूड फेस्टिवल 6th एनुअल ईयर है जी हमारा, एंड दिस इवेंट इज ब्रॉट टू यू बाय मी एंड माई कंपनी बिंदास सर्विसेज। ये 5 साल से मैं लेके आ रहा हूँ जी आपके लिए, एंड वी आर ग्रोइंग एवरी ईयर। दिस विल हैपन ऑन द 1st of November एट द साउंड वेन्यू इन कोपेल। बहुत ही ब्यूटिफुल ओपन एयर वेन्यू है जी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फूड वेंडर्स आते हैं जो कि आपके लिए इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, आई एम ट्राइंग फॉर मोर एशियन कंट्रीज, थाई फूड एंड मोर, एंड इवन अफगानी फूड जो कि आपके लिए वहां पे लाइव बनाया जाता है। लॉट ऑफ द आइटम्स आर कुक्ड राइट ऑन द स्पॉट। इट इज अ फूड फेस्टिवल अलॉन्ग विद दिवाली सेलिब्रेशन। इस साल पहली बार आपको देखने को मिलेगा 20-foot गणेशा, 16-foot सरस्वती एंड 16-foot की पार्वती जी विद LED लाइट्स दैट वी आर एम्बेडिंग इन दैट, एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ रामलीला इन कोपेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आ जाइए सारे फैमिली को लेके, एंट्री एंड पार्किंग इज एब्सोल्युटली फ्री, ऑल डे एंटरटेनमेंट चलता रहेगा जी। द इवेंट स्टार्ट्स एट 12 o'clock, इट गोज ऑल द वे टिल 8 o'clock in the evening, and we do free sparklers, यानी कि फुलझड़ियाँ शाम को हम साथ में मिलके जलाते हैं। बहुत सारा एंटरटेनमेंट ऑन द स्टेज भी रहता है जी, जिसमें बहुत सारे डांसर्स, डांस ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, सिंगर्स, सम ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ डैलस जो हैं जिनको आप सब जानते हैं, दे विल ऑल्सो बी परफॉर्मिंग लाइव फॉर यू। बाउंस हाउसेज हैं बच्चों के लिए, शॉपिंग बाजार लगाया जा रहा है, एंड इफ यू लाइक टू प्रमोट योर बिजनेस इन दैट शॉपिंग बाजार, आप का बिजनेस है, आप एक फूड का काम

0: हमारे दारा सिंह जी, आपके लिए हिमालयन बाजार आ गया है जी ग्रैंड प्रेरी के अंदर, जो ऑथेंटिक साउथ एशियन ग्रोसरी फ्रेश प्रोड्यूस प्रीमियम हलाल मीट लेके आया है। गर्मा गर्म स्नैक कैफे खुल चुका है, मोमो शोमो ऑथेंटिक नेपाली स्ट्रीट फूड, साथ में आपको चाय पत्ती का इंतजाम, अच्छा फिर वो खली आ जाते हैं, चाय कॉफ़ी का इंतजाम भी उन्होंने कर रखा है, ऑल अंडर वन रूफ है। ठीक है जी, आपको $50 की डिलीवरी पर आपको डिलीवरी फी नहीं लगेगी, आपको 5 माइल के अंदर अंदर घर आपका होना चाहिए उनसे। तो चेक कर लीजिए ना, गूगल में डालिए भाभी जी हिमालयन बाजार और देखिए आपके घर से कितना दूर है। अगर तो 5 माइल के रेडियस में है तो ग्रोसरी मुफ्त, मुफ्त डिलीवरी, ठीक है, ग्रोसरी मुफ्त नहीं है, डिलीवरी फ्री है, बहुत अच्छी डील है। नॉनदलेस दे आर वंडरफुल पीपल, इफ़ यू हैवंट गॉन एंड चेक द स्टोर येट आई रिकमेंड कि आप जाके चेक कीजिए जी, और make that your neighborhood grocery store. With that, it is time for me to say bye-bye, adios. By God, time का तो पता ही नहीं चलता आप लोगों के साथ, पर वो बीवी के साथ पता चलता है, एक एक पल का टाइम का पता लगता है, जैसे आपको ही मेरे साथ टाइम का पता नहीं चलता, बट वहाँ जाके यू नो क्या, वहाँ जाके मज़े आते हैं भाई, रिलेशनशिप होता है ये, ठीक है ना, इसमें थोड़ी स्वीटनेस, थोड़ी खट्टापन, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्च जरूरी है यार, ये मसाले लगाते रहो, ज़िंदगी खूबसूरत बनाते रहो, दुआ में मुझे याद रखिएगा, आई विल डू द सेम फॉर यू ऑल, एंड अगर कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा यार, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाने का। हाँ जी, यू आर द पर्सन जिसके अराउंड सारा, जो आप कहते हो ना, मेरा घर, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरे पेट्स, मेरा बिजनेस, मेरे हॉबीज़, मेरे खाने पीने के शौक, भैया ये तब तक ही हैं जब तक आप सही सलामत हैं, तो आपको अपने आप को प्रायोरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट विल फॉल इन प्लेस। विद दैट इट इज़ गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टमारो 5 से 7।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
5: I'm James Tallarico, and I approve this message.
4: Paid for by Tallarico for Texas.
6: Agar main kahun tumhara cholesterol 300 hai aur blood pressure 160, to kya kahoge?
7: Kya?
8: Wake up!
9: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं, उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
10: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com।
11: शॉपिंग बिल्कुल,
12: पर कहाँ? फेस्टिव लुक्स के लिए वही 2 से 3 ऑप्शंस।
13: ऑप्शंस? आई विल गिव यू द लेटेस्ट डेस्टिनेशन।
14: इंट्रोड्यूसिंग पूजा ट्रेंड्स, लहंगाज, कोऑर्ड सेट्स, फ्यूजन वेयर, शराराज और ज्वेलरी, प्रीमियम क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइसेस, ग्रैंड ओपनिंग सेल, फ्लैट 15% ऑफ। विजिट 10202 कोइट रोड, स्वीट 400, फ्रिस्को। कॉल 214-457-4897। पूजा ट्रेंड्स, योर ट्रेंड, योर स्टाइल।
15: जहाँ तंदूर की आंच घर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ

ओ मन्नू, एक्चुअली मन्नू ना मेरे बड़े भाई का घर का नाम है, मार्टिन है जी उनका नाम, मार्टिन मार्विन दो भाई हैं हम, उनके टिन बजता है, मेरे विन बजता है, और मेरे घर का नाम कन्नू है, उनका घर का नाम मन्नू है, तो मन्नू सुन के हमें मन्नू भैया की याद आ जाती है भैया पर कोई बात नहीं, हम रोज़ फोन पर बात करते हैं, ऐसी कोई इमोशनल ड्रामे वाली बात है नहीं, मजे लेने में क्या जाता है, मजे आपको लेने हैं जी। अब तो आपको घर बैठे बैठे ग्रोसरी मिलेगी, स्पेशली फॉर द भाभीज दैट लिव इन आर्लिंगटन, ग्रैंड प्रेरी, या फिर अगर आप रहते हैं ना मैंसफील्ड में, आपको ग्रोसरी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए आ चुका है, जैसे कि वो कहते थे।